सुप्रभात। एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगी।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़

0: कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर जिद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: सौ दशमलव पांच मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
4: यदि हम अपनी समस्त सामाजिक बुराइयों के मूल तक पहुंचें तो एक ही समस्या नजर आएगी और वो समस्या है मैं का विकृत रूप। इस मैं का विकृत रूप क्या है? मैं जिंदा रहूं, दूसरे मरें मेरी बला से, और जरूरत हो तो दूसरों को मारकर भी मैं जिंदा रहूं। मुझे निरंतर अनुकूलता बनी रहे और जरूरत हो तो दूसरों की प्रतिकूलता देकर भी मुझे अनुकूलता मिले। जीवन के साधन मुझे मिले, सत्ता मेरी रहे। कोई भी मनुष्य यदि वो समाज में रहता है तो वो वास्तव में इस तरह स्वतंत्र नहीं होता। कोई भी व्यक्ति समाज से पृथक कैसे हो सकता है? सेंस ऑफ सेपरेशन, मैं दूसरों से विशिष्ट हूं, पृथक हूं, यही विकृति मैं की भ्रांति है। इस भ्रांति की बुराई क्या है? व्यक्ति समझता है मैं साध्य हूं और दूसरे साधन है, मैं सजीव हूं दूसरे निर्जीव हैं, मैं दूसरों का साधन की तरह, वस्तु की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। अब इसे इस तरह समझें, हमने अपने मैं की भ्रांति में अपने पर्यावरण का साधन के रूप में कैसा इस्तेमाल किया, फिर आंख खुली तो समझे कि अपनी नासमझी में हम कितना नुकसान झेलते रहे। तो आंखें खुली रखकर हम अपने मैं को संस्कार प्रदान करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवेश पर निर्भर करता है, चाहे वो सामाजिक परिवेश हो, आर्थिक परिवेश हो, राजनीतिक परिवेश हो, सांस्कृतिक परिवेश हो या प्राकृतिक परिवेश। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवेश पर निर्भर करता है और इनके बीच में निरंतर आदान प्रदान चलता रहता है। पूरे ब्रह्मांड में दिन रात आदान प्रदान का ये यज्ञ चल रहा है, हम देख नहीं रहे पर यह यज्ञ निरंतर चल रहा है। यज्ञ वो कर्म कांड वाला यज्ञ नहीं, यज्ञ जैसा कि गीता में कहा गया है, यज्ञ से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से धुआं, धुएं से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से अन्न उपजता है और अन्न से ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे मनुष्य की उस देह का निर्माण होता है जो यज्ञ करता है। सारे ब्रह्मांड का परस्पर संबंध यज्ञ है। हम एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ होम करते रहते हैं। सूर्य यज्ञ करता है, अपनी किरणों का समुद्र में होम करता है, उस होम से बादल बनते हैं। यही है एक दूसरे के प्रति परस्परता का भाव, समर्पण का भाव, संवेदनशीलता का भाव, जिससे संस्कृति बनती है, राष्ट्र और विश्व मजबूत होता है। एक किसी राजा के यहां वीणा रखी थी, असाध्य वीणा, उसको कोई साध नहीं सकता था। एक फकीर उसे साधने आता है, वह वीणा को गोद में लेकर बैठ जाता है, एक यंत्र की तरह नहीं बल्कि एक जीवित बच्चे की तरह। अब वो उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने लगा कि यह वीणा बनी कहां से, इसकी लकड़ी किस वृक्ष से आई, वो वृक्ष कहां उगा है, उसका इतिहास क्या है, कितने हजारों पक्षियों ने उस पर रैन बसेरा लिया, कितने यात्री उसकी छांव में बैठे। सारी चीजों पर वो एकाग्र ध्यान लगाकर बैठ जाता है। पेड़ की शाखाओं, उसके तने और जड़ों की गहराई तक उसका ध्यान पहुंचता है और इस ध्यान में वो तल्लीन होकर समाधिस्थ हो जाता है। राजा और दरबारी अधीर हैं। आया तो था वीणा साधने पर लगता है सो गया। अनायास उसकी अंगुलियां चलती हैं और ऐसा संगीत झंकृत होता है कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमें भी अपने परिवेश की असाध्य वीणा के साथ तादात्म्य स्थापित करना है, इससे उसके साथ सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। कोई जोर, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं। यदि कुछ सायास होगा तो वो चतुराईपूर्ण व्यवहार कुशलता होगी, जिसमें वो विकृत में खड़ा होगा, आत्ममुग्ध, अकेला। जबकि पारस्परिक निर्भरता और पारस्परिक उत्सर्ग की भावना से जिस संवेदनशीलता का उदय होगा, उससे मनुष्य को अपने संपर्क में आने वाले मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों से ही नहीं अपितु वृक्ष, लता, नदी, नाले, झरने और आकाश आदि समस्त वातावरण के साथ तादात्म्य अथवा एकता की अनुभूति का बोध होगा, जो अनवरत फलती रहेगी और सबके लिए मंगलकारी होगी।
3: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अहम के संबंध में विचार, वाचक स्वर था प्रेम कुमार सडाना का। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं ये मातृवंदना।

सम्मोह स्वर में मातृवंदना की बात आइए सुनते हैं। उदित नारायण के स्वर में ये गणेश वंदना। भगवान गणेश देवों में प्रथम पूजनीय हैं, जो बुद्धिमता, समृद्धि और सौभाग्य के सर्वोच्च देवता हैं। आइए भगवान गणपति को नमन करते हुए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

रेमन, जब हम विपरीत परिस्थितियों से घिर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जीवन में कोई राह नजर नहीं आती, तो उम्मीद की एक ही किरण नजर आती है, वो है प्रभु शरण, प्रभु चरण, और उनके चरणों में जगह पाकर जीवन आनंदमय हो जाता है।

अभी आप सुन रहे थे सुनील मुखर्जी और साथियों से भक्ति रचना वंदना कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं जानी बाबू कव्वाल से ये नात।

इस नाद के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:40 हुए हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

गरुड़ के आगमन से काकभुशुंडी समेत सभी पक्षी अति प्रसन्न हुए। काकभुशुंडी ने उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और उनके वहां आने का उद्देश्य पूछा। गरुड़ का आधा मुंह तो वैसे ही भंग हो चुका था, फिर भी उन्होंने इस स्वीकारोक्ति के साथ काकभुशुंडी से रामचरित सुनाने की विनती की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीत पद पाठ, कलाकार थे ए हरिहरन। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

दिन में 3:10 पर न्यू इंडिया समाचार, रात्रि 9:15 पर स्पोटलाइट, रात्रि 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। रात्रि 8 काव्यांजलि केंद्र का सुनिएगा श्री इमरान हुसैन से काव्य पाठ। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडल होगा दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत बच्चे सुनेंगे बच्चों के मुख से रचनाएं, बाल गीत और डॉक्टर पूजा डबास की वार्ता। बच्चे अच्छी संगत में रहें। युवाणी कार्यक्रम शाम 5:10

ബർഫോണിയൻ കാരിറ്റം ഹുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रोता सुनेंगे श्रोताओं की अनुरोध मां।

0: किसान साथी कृषि जगत कार्यक्रम सुन पाएंगे शाम 7 बजे। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन। सुबह 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा धूम सिंह के गाए गढ़वाली लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में विविध कलाकारों के गाए पंजाबी लोकगीत सुनवाए जाएंगे सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 का समय रहेगा सामुदायिक गान का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में पंकज उदास की गायी गजलें प्रसारित की जाएंगी रात्रि 8:20 पर। आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर सुनिएगा कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे सुबह 9 बजे। समय याद रखिएगा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं भूले बिसरे की और फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे सुबह 10:12 पर दिन में 11 बजे 1:15 पर 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में 3:25 पर शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत शाम को 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेगनगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान् यद्धि बहुविधैः सङ्कटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड 19 महामारीं तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकट समं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विक विकासलाभः प्रपादितः भविष्यति, जनसंख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढा पूर्तिश्रृङ्खलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बद्धेभ्यः अधिका महत्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रा

0: याः तृतीयचरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीया यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिकद्विसहस्रतमाब्दीयायाः राष्ट्रिय शिक्षानीतेः 23-अधिकद्विसहस्रतमाब्दीयस्य राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु तिसृषु भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीयमूलकं भवेत्। भारतीयर्तुविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ति क्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलं माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष

0: साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है महल, शब्द है नक्शब की और संगीत खेमचंद प्रकाश का है।

0: अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के मां वाराही धाम में निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों और मोटर मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन सतर्क, आम जनमानस से साफ सफाई रखने का आह्वान किया गया। और चंपावत में 13 दिवसीय गोलजू महोत्सव 2026 का हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां वाराही धाम केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने चंपावत के देवीधुरा स्थित मंदिर के नवनिर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि धाम का विकास इसकी पौराणिक गरिमा एवं मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ताकि श्रद्धालु को आधुनिक सुविधा के साथ आध्यात्मिक अनुभूति भी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि मां वाराही धाम आने वाले समय में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। गौरतलब है कि लगभग 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंदिर के भव्य नवनिर्माण कार्यों को चार खाम सात थोक और मां वाराही शक्तिपीठ ट्रस्ट द्वारा आगामी 2 से 3 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने देवीधुरा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा और 3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक हो गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CBSE 12वीं की परीक्षा में राज्य के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली हल्द्वानी की छात्रा अरीना रघुवंशी से फोन पर बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रघुवंशी की ये उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कल मसूरी में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों और मोटर मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंढोर बाजार में भूधसाव प्रभावित क्षेत्र का भी जायजा लिया। श्री जोशी ने कहा कि लंढोर बाजार क्षेत्र में करीब 26 लाख रूपये की लागत से मार्ग के सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। वहीं मोतीलाल नेहरू मार्ग और मॉल रोड की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए भी लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए ताकि स्थानीय लोग और पर्यटकों को राहत मिल सके। वहीं इस दौरान गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण संबंधी आह्वान का उल्लेख करते हुए लोगों से पेट्रोल और डीजल की बचत में सहयोग करने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री ने उपजिला चिकित्सालय मसूरी का निरीक्षण कर कर्मचारियों की कमी पर चिंता जताई और अधिकारियों को अस्पताल में आवश्यक नियुक्तियों की जल्द व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर उपजिलाधिकारी सतपुली रेखारिया ने क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं मिले और व्यवस्थाओं में खामियां पाई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेठाखार में 3 कर्मचारियों में से केवल फार्मासिस्ट मौजूद मिले, जबकि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और एएनएम अनुपस्थित पाए गए। वहीं पीएससी संगलाकोटी में भी प्रभारी चिकित्सक और फार्मासिस्ट ड्यूटी पर नहीं मिले और पेयजल व्यवस्था भी बाधित पाई गई। पीएचसी पोखड़ा में एक चिकित्सक समेत आरबीएससी की टीम अनुपस्थित मिली है। निरीक्षण के दौरान संबंधित कर्मचारी क्षेत्र भ्रमण रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। वहीं रेठाखाल आयुष विंग में 2 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और बायोमेट्रिक मशीन भी बंद मिली है। एसडीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी जाएगी ताकि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जा सके।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर डेंगू के नियंत्रण और रोकथाम के लिए हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आगामी मॉनसून को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए ताकि डेंगू के प्रकोप से लोगों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, पंचायती राज, खंड विकास अधिकारियों, शिक्षा विभाग एवं बाल विकास विभाग को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक स्तर पर डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सा अधिकारी एवं जिला मलेरिया अधिकारी को डेंगू जांच की पर्याप्त व्यवस्था, मरीजों के लिए समुचित वार्ड, ब्लड बैंक में प्लेट्स की पर्याप्त उपलब्धता,

0: तथा आवश्यक दवाइयों का अग्रिम भंडारण करने के भी निर्देश दिए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए आमजन से घर और आसपास के परिसर की साफ सफाई का आह्वान किया गया ताकि डेंगू के मच्छरों के पनपने की संभावना को समाप्त किया जा सके। चंपावत में 13 दिवसीय गोलजू महोत्सव 2026 का कल हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत को देश का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श जिला बनाना राज्य सरकार का विकल्प रहित संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलजू महोत्सव प्रदेश की लोक सांस्कृतिक परम्परा, कला और विरासत को जीवंत बनाए रखने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता और सकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिली है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। वहीं पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष भटगई की पहल हेलो हेल्प पिथौरागढ़ को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। शुक्रवार को शुरू किए गए इस शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म पर पहले दिन 57 शिकायतें दर्ज की गई। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखता है, विपक्ष को एसआईआर से नहीं बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया से है परेशानी। सांसद अनिल बलूनी के हवाले से हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, बरसात से पहले सड़क के काम पूरे किए जाए, पौड़ी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। एक सप्ताह में होगी शिक्षकों की तैनाती, इस शीर्षक के साथ अमर उजाला खबर में लिखता है, शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। सीबीएसई के छात्र छात्राएं घर बैठे देख सकेंगे अपनी कॉपी, इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र खबर में लिखता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुरू की नई व्यवस्था, 19 मई से प्रारंभ होगी प्रक्रिया। नीट यूजी पेपर लीक की खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी निशाने पर, पेपर लीक कराने वाली दूसरी लेक्चरर भी गिरफ्तार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में मां वाराही धाम में नवनिर्माण और विकास कार्यों का किया निरीक्षण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों और मोटर मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन सतर्क, आम जनमानस से साफ सफाई रखने का आह्वान। और चंपावत में 13 दिवसीय गोलजू महोत्सव 2026 का हर्षोल्लास के साथ समापन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए धूम सिंह के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: धूम सिंह की कैस गढ़वाली लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमरे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
8: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीब

0: बिक्री के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said

नमस्कार, देहरादून कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से। श्रोताओं, हर दिन नया उम्मीद लेकर आती है। जी हाँ, कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा बीतेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और आज का दिन मंगलमय होगा। पर ना चाहते बहुत सी बार ऐसी उलझन या तनाव में हम फंस जाते हैं कि मुश्किलें बढ़ती चली जाती है। श्रोताओं, इस तरह की समस्याएं आगे चलकर बड़ी मुसीबतें बन जाती है, यानी कि छोटे छोटे तनाव आपके लिए हाइपरटेंशन के कारण बन जाते हैं, जिसे उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, यानी कि हाई बीपी। इसके आमतौर पर लक्षण हैं खासकर सुबह के समय सिर दर्द, चक्कर आना, थकान महसूस होना, गुस्सा होना, सीने में जकड़न, चिड़चिड़ापन, मोटापा आदि। इसको अगर नियंत्रित नहीं किया जाए तो इसके भयंकर रूप में अनेक बीमारियां हमारे सामने आती हैं, जैसे धमनियों में खून का दबाव बढ़ना, दिल दिमाग व किडनी की बीमारियां और साथ ही आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है, साथ ही याददाश्त पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें ये स्थिति गंभीर ना हो, इसलिए बीपी को कंट्रोल करें, जैसे कि पूरी नींद लें, लगातार बैठे ना रहें, खाने में नमक का सेवन कम करें, तला भुना कम खाएं, धूम्रपान से बचें, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, स्क्रीन टाइम को अवॉइड करें, यानी कि ज़्यादा टाइम ना देखें, और अधिक से अधिक योगा करें, ध्यान करें, पानी का सेवन करें। और इस प्रकार से हम बहुत हद तक बीपी को नियंत्रित कर सकते हैं। श्रोताओं, आज हम विश्व रक्तचाप दिवस मना रहे हैं और अब की बार की थीम है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें और मिलकर इसे हराएं। जी बिल्कुल, हमें इसे हराना है और अपनी जीवन शैली को हंसते मुस्कुराते हुए खुशीपूर्वक बिताना है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम ये पहला गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं कि अखबार के पन्नों में आज क्या है खास समाचार। दून में 8 जून से घर घर पहुंचेंगे बीएलओ, तिथिवार चलेगा ऐसा पूरा कार्यक्रम। जिला अस्पताल भी हर बुधवार 200 कर्मी वैकल्पिक परिवहन का करेंगे उपयोग। सीबीएसई इंटर के परीक्षार्थी घर बैठे देख सकेंगे कॉपी। राशन कार्ड अब ऑनलाइन घर बैठे होंगे नए नए आवेदन। आयुष में प्रतिनियुक्ति रद्द, 112 कार्मिक मूल तैनाती स्थलों पर भेजी। वन पंचायतों के जंगलों को भी जल सुरक्षा का कवच। आज से पुरुषोत्तम मास, पूजा दान और पुण्य का विशेष महत्व। 13 और 14 जून को होगी नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ का असर बरकरार। उत्तर भारत में मौसम प्रणाली सक्रिय, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप। और अब मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज रविवार को देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में 4500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में आकाशीय बिजली और तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये थी मौसम संबंधी जानकारी। और आइए भी इतिहास के पन्नों को पलटते हैं कि आज का दिन 17 मई क्यों है खास। 1749 में दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ था। उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह की प्रतिबंध लगाए थे। आज के दिन 1861 में लंदन में पेश की गई पहली रंगीन तस्वीर। 1953 में हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म हुआ था। 1975 में जापान की जुबेको हनेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी। 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। और 2010 भी भारतीय मुक्केबाजों में कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेंद्र सिंह ने सभी 6 पदक अपने नाम किए थे। ये थी इतिहास की पन्नों से जानकारी। और आइए अब आपका मनोरंजन करवाते हैं, सुनते हैं ये गीत।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज दुनिया एक विश्वग्राम की तरह बन गया है और दूरियां समाप्त हो गई है। पल में दुनिया के किसी भी कोने से हम बात कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये सब संभव हुआ है दूर संचार से। सूचना का एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम आमने सामने बात कर सकते हैं आसानी से, शीघ्रता से और विश्वसनीयता से। जी हाँ श्रोताओं, ये वो जानकारी है जिससे हम प्राप्त कर बहुत आसानी से खुशी महसूस कर सकते हैं और ये सब संभव हुआ है दूर संचार से। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 17 मई को दुनिया भर में विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य है दूर संचार के महत्व और उसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना

0: हुई थी। यही कारण है कि वर्ष 1969 से प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और श्रोताओं, जिस प्रकार से वर्तमान में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहे हैं, उसी प्रकार आज दूर संचार में भी नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, जिसने इसको और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। गनगनाते टेलीफोन से लेकर आज मोबाइल फोन, नई नई तकनीक हर दिन परिवर्तन हो रहे हैं, जिसने हमारी सूचनाओं को प्राप्त करने और सूचनाओं को दूसरों तक पहुँचाने में मदद की है। आइए हम भी इसकी दुष्परिणामों से दूर दूर संचार को अपने जीवन में खुशी खुशी अपनाएं।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफ एम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अपनी गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले कलाकार थे, गजल गायक थे पंकज उधास। उनका जन्म आज ही के दिन 17 मई 1951 को गुजरात के राजकोट में हुआ था। पार्श्व गायक पंकज उधास मुख्य तौर पर गजल गायक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन गायकी के साथ साथ भी म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। साथ ही गजलें लिखने का उन्हें हमेशा से ही शौक रहा है। पंकज उदास के पिता का नाम केशु भाई उदास और माता का नाम जीतूबेन पटेल। अपने तीन भाइयों में छोटे थे पंकज उदास। अपने दोनों भाई बनर उदास और निर्मल उदास ने संगीत की दुनिया में नाम कमाया है। श्रोताओं, पंकज उदास के बड़े भाई मनोहर उदास गजल गायक के साथ साथ अभिनेता भी रहे हैं और जिनकी वजह से ये संगीत के संपर्क में आए। रंगमंच पर इनका पहला प्रदर्शन भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था, जिसमें इन्होंने देशभक्ति गीत गाया था, ये मेरे वतन के लोग, और इसके बाद ये दशकों में लोकप्रिय हो गई। और श्रोताओं, इसके बाद इन्होंने राजकोट की संगीत नाटक अकादमी में ये भर्ती हो गई और तबले बजाने की बारीकियाँ सीखने लगे। साथ ही इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान स्नातक की पढ़ाई की, साथ ही समय निकाल कर ये गायन का अभ्यास भी किया करते थे। लेकिन इन्हीं दिनों पंकज उदास का समय संघर्ष भरा रहा और 1972 में इन्होंने फिल्म कामना के लिए गीत गाया था। वो लोकप्रिय नहीं हुआ, वो गीत असफल रहा था, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी बल्कि गजल गायन में और ज़्यादा रुचि लेने लगी और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किए और यही कारण रहा कि आगे चलकर इनके गाए गीत बेहद ही लोकप्रिय हुए। हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने सन 1986 में फिल्म नाम के लिए गीत गाया था चिट्ठी आई है, जिसके लिए बेहद ही खूब प्रसिद्धि मिली और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे इनाम भी प्राप्त किए। संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2006 में प्रसिद्ध गजल गायक पंकज केशु भाई उदास को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही इन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। गजल गायकी के लिए केएल सहगल पुरस्कार प्राप्त किया है। सन 1990 में इन्होंने उत्कृष्ट युवा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1994 में इन्होंने रेडियो लोटस अवार्ड प्राप्त किया। 96 में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संगीत में योगदान के लिए प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त किया। 2003 में दादाभाई नौरोजी मिलन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। 2003 में गजलों को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया। श्रोता, इस प्रकार से गजल गायकी में बहुत ही मशहूर रहे गजल गायक पंकज उदास थे। इन्होंने गजलों को आमजन तक पहुंचाकर लोकप्रिय बनाया, पर 26 फरवरी 2024 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और इनकी गायकी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। सुनते इनकी आवाज़ भी ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम नमस्कार देहरादून यहीं संपन्न हुआ। हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार देहरादून।

यथा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे ही लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे।

कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे में आप सभी का स्वागत और नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से श्रोताओं, आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रेडियो के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रसारण किया जाता है ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। श्रोताओं, आजकल की भागदौड़ व्यस्त जीवन शैली से हमारा जीवन बिल्कुल बदल रहा है और जिसका प्रभाव हम देख रहे हैं और इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर सीधा सीधा हो रहा है, जिसको हम अनेक रूपों में देख सकते हैं। यही कारण है कि आज बात बात पर क्रोध आना, तनाव या चिड़चिड़ापन जैसी आदतों के कारण रक्तचाप, मधुमेह या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को जन्म दिया है। श्रोताओं, आप सभी स्वस्थ रहें, हम सब की यही कामना है और इसके लिए आकाशवाणी द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और आपकी दिल की बात को समझकर अनेक कार्यक्रम ऐसे प्रसारित किए जाते हैं ताकि आप दिल से खुश रह सकें। इसके लिए अनेक वार्ता, परिचर्चा, इंटरव्यू, विशेषज्ञों से जानकारी आदि प्रदान की जाती है कि ताकि आप खुश रहें और कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकें। जी हाँ श्रोताओं, दिल का हमारे स्वास्थ्य से ही संबंध नहीं है बल्कि दिल का भावनात्मक रिश्ते भी जुड़े होते हैं जिसको हम कभी भी नकार नहीं सकते। जिगर मुरादाबादी की चंद पंक्तियाँ हैं। आगाह से मोहब्बत का अंजाम बस इतना है, आगाह से मोहब्बत का अंजाम बस इतना है कि जब दिल में तमन्ना थी अब भी दिल में तमन्ना है। जी हाँ श्रोताओं, आज की जो थीम है वो है दिल की बात। रेडियो के साथ लिख भेजे अपने विचार 7088000731 पर। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर एक बार पुनः नोट कर लें, 7088000731। इस नंबर पर लिख भेजिए अपने विचार और आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। एक बार पुनः नोट करें, थीम दिल की बात रेडियो के साथ।

कार्यक्रम में पहला मैसेज हमारी श्रोता लिखते हैं, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरली और खूबचंद वर्मा। आप सभी लिखते हैं कि दिल की बात रेडियो के साथ बहुत अच्छा थीम है। रेडियो के माध्यम से समय समय पर दिल की बात बहुत ही विस्तार से बताई जाती है। दिल है तो दिन है और हमें दिल की बात सभी लोगों से खुलकर बतानी चाहिए, तभी हमारे मन की तकलीफ दूर होती है। रेडियो के द्वारा बहुत ही सुंदर जानकारी दी जाती है, हमें रेडियो की बताई बातों को बहुत ही गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद बलकरण वर्मा जी और आपके सभी परिवारजन, बहुत सुंदर आपने अच्छा विचार लिख भेजा है। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुशोदेल संगीत रानी, पप्पू इस्माइल, हंसमुख लाल, संजीव कंचन, सुनीता जिंदल और साथ में इनका पूरा खुशोदेल परिवार। लिखते हैं कि प्रोग्राम की थीम रखी है आपने रेडियो की बात दिल के साथ, और इस बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए। इसके कारण है कि इससे हमें हमारे जो बीमारियां हैं दूर भागती है। इस गर्मी के मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पंछियों की सेवा करनी चाहिए, पानी की बर्तन, रोटी के टुकड़े आदि वगैरह रखने चाहिए। और बाकी आप सभी प्रोग्राम प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है जी, बिल्कुल धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें और अपने विचार हमें साझा करते रहें। कार्यक्रम में अगला मैसेज लें, लेकिन उससे ले लेते हैं पहले ये गीत। लेकिन अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज की थीम है दिल की बात रेडियो के साथ।

कार्यक्रम में मैसेज हमें लिखते हैं रीना शर्मा रुड़की उत्तराखंड से। लिखते हैं कि आज की जो थीम है दिल की बात रेडियो के साथ, इस पर कुछ लाइनें हैं। जिंदगी को हंस के जीना चाहिए, जिंदगी को हंस के जीना चाहिए, गुलाब के फूलों से सीखो, क्योंकि कांटे तो सबकी राह में हैं, फर्क बस इतना है कि वो उनमें से कोई रो देता है तो कोई गुलाब की तरह खिल जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। निश्चित ही हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत ही हंस कर बिताना चाहिए, खुशनुमा बिताना चाहिए, ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहें। साथ ही कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है देहरादून चक्राता रूढ़ ईदगाह मोहल्ला से ही। सुनील चावला, मीना साक्षी, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी, दीक्षा, कृतिका और साथ में इनके परिवारजन। आपसे भी लिखते हैं कि हर रविवार को कार्यक्रम हम सुनते हैं, विचार आपके गीत हमारे अच्छा लगता है, और आज का जो सब्जेक्ट लिया गया है वो भी अच्छा है, प्रोग्राम हमें अच्छा लगता है। और लिखते हैं कि हम इसके बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि रेडियो पर हमको हर प्रकार की नई नई जानकारी मिलती है और मनोरंजन भी होता है, और डॉक्टर से हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। आज के तनाव के समय में ज़िंदगी में हमें मुक्त रहना चाहिए तनाव से, और क्योंकि हम खुश रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, और क्रोध भी नहीं करना चाहिए, हर समय खुश रहना चाहिए। बिल्कुल निश्चित ही हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे, आप इसी तरह खुश रहें और हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून के साथ, और आज के प्रोग्राम की थीम दिल की बात रेडियो के साथ। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। कार्यक्रम में अगला मैसेज रहे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में मैसेज हमें लिख भेजा है आप हैं सुकांत कंबोज, मैं हूँ वाला माफी देहरादून उत्तराखंड से। लिखते हैं कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, अपना भी ध्यान रखना चाहिए और साथ ही पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने सही लिखा है सुकांत जी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और साथ में पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें, जानवरों का भी ध्यान रखें, ताकि वो भी गर्मी से बचे रहें। धन्यवाद आपकी सुंदर से मैसेज के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें लिख भेजा है आपने, ये मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा कपिल और पूजा परिहार। लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इस अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दिल की बात रेडियो के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि दिल का रिश्ता हमारा कई वर्षों से रेडियो के साथ जुड़ा है। दिल का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। रेडियो के अलावा हमें सभी रिश्तों को दिल से निभाना चाहिए। आकाशवाणी की भूमिका कई वर्षों से सराहनीय रही है। समय समय पर विभिन्न अवसर पर दिल के रिश्तों के बारे में साथ साथ ही दिल संबंधी जानकारी, चिकित्सीय परामर्श आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। अब आकाशवाणी से भावनात्मक रिश्तों की भी चर्चा की जाती है। दिल को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसकी भी परामर्श और सलाह विशेषज्ञों द्वारा आकाशवाणी से कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर दी जाती है। हम उसका लाभ भी उठाते हैं, लाभान्वित होते हैं। दिल के रिश्ते हमारी गहराई से जुड़े होने चाहिए, अब चाहे वह समाज का हो, परिवार का हो, दोस्ती का हो या फिर आकाशवाणी का। दिल से जुड़े रिश्ते कई युगों युगों तक टिके रहते हैं और उनको याद भी किया जाता है। इन सभी के कार्य

कार्यक्रम में आकाशवाणी की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है, बेहतरीन है। जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं आकाशवाणी से, बड़ी शिद्दत से सुनते हैं, लाभान्वित होते हैं। और अब तो आजकल डिजिटल युग में मोबाइल ऐप के द्वारा विश्व के किसी भी कोने में आकाशवाणी के कार्यक्रमों को स्पष्ट तरीके से सुना जा सकता है। किसी कवि द्वारा भी खूब कहा गया है, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र छिपा जी और आपके परिजन आपकी सुंदर से और विस्तार से मैसेज के लिए। बिल्कुल, हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह का रिश्ता आपने हमारे आकाशवाणी के साथ बनाया है, वो रिश्ता हमेशा यूं ही कायम रहेगा। चलिए पढ़ते हैं कार्यक्रम में, आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम विचार, आपके गीत हमारे आज के कार्यक्रम की थीम है दिल की बात। रेडियो के साथ लिख भेजे अपने विचार व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। कार्यक्रम में अगला मैसेज जो श्रोता हमें लिखते हैं, गांव झगुड़े जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेजो गौरव, परवीन युगम, विनेर और मनराज लिखते हैं।

की कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। विचार आपके गीत हमारे आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है और लिखते हैं कि हमें अपने दिल की बात अपने रिश्तेदारों से कहकर मन को हल्का कर लेना चाहिए, इससे तनाव कम होता है और गर्मी के दिनों में हमें खासकर पशु पक्षियों को दाना पानी जरूर देना चाहिए जिससे कि वे सुरक्षित रह सके। धन्यवाद जगुड़ी के हमारे श्रोता हैं रणदीप बांगड़ जी और आपके परिवारजन। बिल्कुल आपने सही लिखा है कि गर्मी तेजी से पड़ रही है और साथ में अपने साथ साथ हमें पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है ताकि वो भी सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें लिख भेजा है आप हैं संजय कुमार आर्य सेवानिवृत्त ओल्ड ढालन वाला देहरादून से। लिखते हैं कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, वैसे भी दिल व भावनाओं तक सफर भी रेडियो से होकर गुजरता है। कुछ आवाजें दिखाई नहीं देती पर दिल में हमेशा गूंजती रहती है। रेडियो उन्हें एहसासों का नाम है। रेडियो केवल एक यंत्र नहीं बल्कि भावनाओं का वह साथी है जो बिना दिखे भी दिल के बहुत करीब रहता है। जब मन अकेला होता है तो रेडियो की आवाज एक अपनेपन का एहसास देती है, कभी पुराने गीतों के माध्यम से यादों को जगा देता है तो कभी मधुर आवाज के सहारे दिल की अनकही बातों को शब्द दे देता है। क्या बात है संजय कुमार आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर से विचार के लिए। बिल्कुल हम भी आपको दिल से धन्यवाद देंगे कि आप इसी तरह हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़े रहें और लाभान्वित होते रहें।

समय 9:33 और 20 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम विचार, आपके गीत हमारे कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, निजामाबाद तेलंगाना से आपने मैसेज लिख भेजा है। एम ए वईद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैजी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुबीर, मोहम्मद मुकर, मोहम्मद नुमान और साथ में इनके बहुत सारे मित्र लिखते हैं कि आज की थीम है दिल की बात रेडियो के साथ। लिखते हैं कि दिल हर इंसान के जिस्म में होता है और हम इस दिल से बहुत से काम करते हैं। दिल ही तो है हम को जो दूसरों को करीब लाता है और इस दिल के हमारे अपने बन जाते हैं। आप शेर लिखते हैं, मगर कभी कोई देखे कोई पढ़े तो सही, दिल आईना है तू चेहरा गुलाब जैसा है। क्या बात है। लिखते हैं कि रेडियो की भूमिका बेहद ही सराहनीय रही है और इसको हम निश्चित रूप से हर दिन सुनते हैं। धन्यवाद एम ए वईद रुमानी जी आपके सुंदर से विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है। आप हैं और लिसनर्स ग्रुप जिला मधुबनी राजनगर बिहार से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर रुद्र गुप्ता लिखते हैं कि जी हाँ, दिल की बात रेडियो के साथ। मैं रेडियो से सन 1968 से जुड़ा हूँ। देश विदेश की रेडियो के माध्यम से अपने दिल की बात साझा करते आ रहा हूँ। रेडियो के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहती हैं और उन्हें हम सुनते भी हैं। और लिखते हैं कि ये लिखते हैं कि जल है तो कल है, आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफ़र सफलतापूर्वक करने के लिए मैं आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद देता हूँ। जी बिल्कुल, इस सफलतापूर्वक सफ़र में आपका भी निश्चित ही पूरा पूरा साथ रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस विचार के लिए। कार्यक्रम में मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, कस्बा गुनूर यूपी से फारूक अली खान, फेजी फरहाज, फरहीन, फारिया और ताहिरा लिखते हैं कि रेडियो ने एक दूसरे के दिल की बात एक दूसरे तक पहुंचाने में बहुत बड़ा काम किया है। रेडियो के 90 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर सभी श्रोताओं को, दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज लें, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम विचार, आपके गीत। हमारे आज के कार्यक्रम की थीम है दिल की बात रेडियो के साथ। कार्यक्रम में मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं मिस बा शमसी नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। लिखते हैं कि दिल की बात को सब तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है रेडियो। जब हम दिल से बोलते हैं तो हमारी आवाज़ सीधे दिलों तक पहुँचती है। रेडियो के साथ जुड़कर अपने विचार कहना बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हर कोई एक दूसरे के जज्बात को समझता है। क्या बात है मिसबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर से मैसेज के लिए। बिल्कुल, आपको भी याद होगा हेलो फरमाइश कार्यक्रम के माध्यम से जब हम सीधे सीधे अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं और उनकी बात को रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाते हैं, दूसरे भी उनको सुनते हैं और उनसे लाभान्वित होते हैं। और इस तरह से रेडियो अपनी भूमिका लगातार निभाता आ रहा है पिछले सालों से। कार्यक्रम में अगला मैसेज लेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारी प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आज की थीम है दिल की बात रेडियो के साथ। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें लिख भेजा है मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। लिखते हैं कि आपको हमारा आदाब। लिखते हैं कि रिश्ते तो बहुत सारे हैं, भाई बहन के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, मियाँ बीवी के रिश्ते, और सभी रिश्ते बहुत ही मजबूत और बहुत ही करीब होते हैं। लेकिन हमारा रिश्ता रेडियो से बरसों पुराना है। यकीन मानिए रेडियो के साथ हम बहुत पुराने समय से जुड़े हैं और इसका साथ हमारा रिश्ता बहुत ही मजबूती से जुड़ा है। रेडियो हमें बहुत सारी जानकारी देता है, बहुत सारी बातें सिखाता है और साथ ही उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है, मनोरंजन भी होता है। और रेडियो का साथ हम कभी नहीं छोड़ सकते। आप लिखते हैं कि रेडियो का दामन हम कभी नहीं छोड़ेंगे, रेडियो को हमेशा हमारा सलाम। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस सुंदर से विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज ही हमें लिखते हैं, आप हैं सहारनपुर से इसरार अहमद, शबनम अनास, मनु और इनके बहुत सारे मित्र। आप लिखते हैं कि दिल की बात यह है कि सब रेडियो स्टेशन पर एक कॉमन है, जैसे कि किशोर कुमार का गाया गीत सुना था फिल्म मेरे जीवन साथी से, और ये सभी रेडियो केंद्र सुनाते हैं, जबकि ये गीत किशोर कुमार जी द्वारा अभिनीत फिल्म मिस्टर मैक्स एक्स इन बॉम्बे का भी है, वो गीत कोई चैनल नहीं सुनाता। दिल की बात यह भी है कि ये सब रेडियो स्टेशन आगे पीछे एक ही तरह के गीत सुनाते हैं, जबकि करोड़ों गीत फिल्मी दुनिया में बने हैं। और लिखते हैं कि हम सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं। क्या बात है, धन्यवाद आपकी इस दिल की बात का। हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, आपने अपनी दिल की बात हमें बताई और हम भी आपको अपनी दिल की बात ये बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों फिर मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गीत वो बिल्कुल प्रसारित हुआ था जो आप मुझे लगता है कि सुनना चाहते हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सुबह से शाम तक हमारे रेडियो के कार्यक्रमों से जुड़े हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी और आप दिल से अपने कार्यक्रमों को, हमारे रेडियो के कार्यक्रमों को सुन पाएंगे और आप खुशी खुशी, आपको अच्छा भी लगेगा। कार्यक्रम में आगे अपना मैसेज लें, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

आप लिख भेजिए अपने विचार व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर दिल की बात रेडियो के साथ। जी श्रोता, बिल्कुल आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आपको फोन नहीं करना है बल्कि व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है।

कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं आप हैं शांति निवास लहेगांव रेलवे अमरावती से। कुमारी कल्पना कुरहाड़े वंदना आशीष और दीपक कुरहाड़े लिखते हैं कि सबसे पहले आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की थीम है दिल की बात रेडियो के साथ। जी बिल्कुल, अच्छी तरह से मैं कहना चाहेंगे कि हमारा रेडियो से कई सदियों से नाता रहा है और हमेशा रहेगा। बात दिल की तो बस हम यही कहेंगे कि रेडियो हमारे दिल के नस नस में बसा है। जब कभी भी हम नर्वस होते हैं, उदास होते हैं, तो रेडियो को शुरू करते ही हमारा उदासी मन एकदम प्रफुल्लित होता है, क्योंकि रेडियो की आवाज़ में वो मिठास है किसी और चीज़ में नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि ये महत्वपूर्ण भूमिका है रेडियो की, जो हमेशा हमारे साथ निभाता रहा है और निभाता रहेगा, यही हमारी शुभकामना है। कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है, धन्यवाद जी आपको जिला अमरावती लहेगांव की हमारी श्रोताओं। और साथ में आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह हमारे साथ अपना प्यारा सा मीठा सा रिश्ता बनाए रखें।

श्रोताओं, आवाज के रूप में ध्वनि तरंगों के माध्यम से आप तक जो कार्यक्रम पहुंचते हैं, मात्र प्रसारण नहीं है बल्कि एक दिल की आवाज है जो आपसे हमें जोड़ता है और हमें आपसे मिलवाता है। और इस सफर का ये वर्ष 90 वर्ष का जो सिलसिला चला है, बहुत ही आपका और हमारा रिश्ता महत्वपूर्ण रहा है और ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहेगा और मजबूती मिलती रहेगी। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी मंजुला नेकी की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के माँ वाराही धाम में नवनिर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता तथा प्रथम और दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों और मोटर मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द सड़क के मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उनका 10 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा करवाया। हरिद्वार में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। आम जनमानस से साफ सफाई रखने का आह्वान किया जा रहा है। चंपावत में 13 दिवसीय गोलचू महोत्सव 2026 का हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया। पौड़ी उपजिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्य ने क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी आशीष भटगई की पहल पर शुक्रवार से शुरू हुई हेलो हेल्प पिथौरागढ़ पर पहले ही दिन 57 शिकायतें दर्ज की गई। पुलिस विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल के बाद 11 पुलिस उपाधीक्षक के तबादले किए गए हैं। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने SSC की ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: सौ दशमलव पांच MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 10:02 हुए, अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कई हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्त, दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है, तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है। एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदी हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है? ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, गिल्ट की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज यह है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है, तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार, अपनापन मिल रहा है, तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है, तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डालें। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए, तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार दे और उसे ये यकीन दिलाए कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डाले। नियमित रूप से उसे बात करते रहे, ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो, तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे थे। इसका प्रसारण आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

ये थे अरमान मलिक, फिल्म का नाम था दे दे प्यार दे, गीत था कुणाल वर्मा का और संगीत अमाल मलिक का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलीप सेन समीर सेन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत, आवाज़ें हैं हरिहरन और चित्रा की, फिल्म का नाम है जिद्दी।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: फिल्म संगीत का अगला गीत सुनने से पहले हम आपको याद दिला दें, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडल होगा दोपहर 12:30 पर। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर, जिसके अंतर्गत आज युवा साथी सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज क्रम रहेगा श्रोताओं के अनुरोध में। कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:00। श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का ये अंतिम गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं जतिन ललित, आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है यस पोस।

फिल्म यस बोस के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 90 जाति उपजाति समुदाय OBC की सूची में है, जिनके विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये बात उन्होंने देहरादून में OBC वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। श्री धामी ने कहा कि राज्य की नीति और बजट को गरीब, वंचित और कमजोर वर्गो के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि OBC संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि वेलफेयर के लिए राज्य में विधिक और संस्थागत व्यवस्था है।

और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अगर हम आपके जो पसंद का गीत है उसकी फरमाइश पूरी नहीं भी कर पाए तो कम से कम आपका नाम और पता हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। तो अपना नाम और पता आप साफ साफ लिख कर हमें भेजें। नंबर है 7088-0000-731। और बहुत सारे मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं। अगला मैसेज जो हमें मिला है ये है रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और अगला मैसेज हम तक पहुंचा है ये है मोहम्मद इनायतुल्ला, इशरतुल्ला, इबादतुल्ला, तेलंगाना राज्य कामारेड्डी ज़िला भवानीपेट गाँव से। अभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं बीएन रेड्डी नगर से मोनिका बालू, विनय कुमार और बीएन रेड्डी नगर से वही मैसेज गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद हमें ये मैसेज लिख रहे हैं और अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा और हरिपाल कौर जी ने। और आरत सैनी खटौली मुजफ्फरनगर रायपुर नागली से हमारे साथ जुड़े हैं। ग्राम पुटपाक तेलंगाना से भवानी वेंकट मास्टर मिथुन महादेव ने यह हमें मैसेज लिख भेजा है। नावेद खान, टीटू अनिल, फरीद खान ज्वालापुर और टीटू रामदयाल ने हमें मैसेज लिखा है। ये लिखा है हमें फरीद खान ज्वालापुर से ये मैसेज लिख रहे हैं। अगला मैसेज जो हम तक पहुंचा है ये है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। और इन सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी ने हमें इस गीत की फरमाइश लिखी थी। और इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखना रानी जूही इकबाल, इमरान अहमद फूल वाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंताशा और आशु अहमद फूल वाले ने। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी खैल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरहेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, इनके पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से। ये लिखा है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुक्कू भाविक सिक्का ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार ने भी हमें इसकी फरमाइश भेजी थी और मैसेज लिखा था। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है कड़ताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, महेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश ने। और ये जो गीत हमने अभी आपको सुनवाया इसकी फरमाइश हम तक खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, और ये मैसेज शायद हम पहले पढ़ चुके हैं, इन्होंने दोबारा भेजा है। और अगला मैसेज जो हम तक पहुंचा है ये है फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से एमए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल और फुलोंग निज़ामाबाद से इन्होंने हमें ये मैसेज लिखा है। और ये जो अगला मैसेज हम तक पहुंचा है ये भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, श्रीमती बनी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी और बेबी हंसिका जोशी, साथ ही कुमारी अंकिता जोशी ने। और जो ये अगला जो फरमाइशी गीत का जो मैसेज हम तक पहुँचा है ये है सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजारनिया, ये लिखते हैं हमें मैसेज गांव खारिया ढाणी, ज़िला सिरसा हरियाणा से, और सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म से ये गीत।
7: अगर हम

देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला निवासी सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आरएस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया आहूजा, तनिषा आहूजा, सीमा द्वार से और सभी चावला फैमिली मेम्बर्स से हमें अपना फरमाइशी गीत लिख भेज रहे हैं। और जो अगला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, जो अगला गीत हमें आपको सुनवाने वाले हैं, उसकी फरमाइश हमें लिख भेजी है खमहरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार ने। और साथ ही बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंचे हैं, तो पहले और भी मैसेजेस शामिल करते हैं। ये फरमाइशी गीत हम आपको बाद में सुनवाएंगे। ये है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। साथ ही हमारे कार्यक्रम के साथ इस वक्त जुड़े हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कौसर। और ये मैसेज हमें लिख रहे हैं

दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी। और ये जो अगला मैसेज हम तक पहुंचा है ये है बिहारी कॉलोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत, डोंडी लोहारा बालौद से कमलेश जयपुरिया चंद्रनगर से रजनी सिंह चौहान, पिंकी और दुर्गा कुमारी, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा। और ये जो अगला मैसेज हम तक पहुंचा है ये है तेलंगाना छोटूपाल से कस्तूरी रामुडू उमा देवी पृथ्वी और नारायण का। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा ये मैसेज हमें लिख रहे हैं, मजनू का टीला से, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोज़ा मुस्कान और अफसर अली नगमा नाज मंसूरी। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा ज़िला गाजीपुर से प्रतीक राय और रोशनी राय और प्रांजल राय का। और इन सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं खिलाड़ी फिल्म से ये गीत।

व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से ये मैसेज हमें लिख भेजा है भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष ने। अगला मैसेज जो हम तक पहुंचा है ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना। अगला जो मैसेज हम तक पहुंचा है यह है किशन वंजानी, नीलम स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन महाजन और किशु का, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से। और अगला जो मैसेज हम तक पहुंचा है यह है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। और हमारे साथ अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये मैसेज इन्होंने लिखा है पटियाली रोड गंज डुंडवारा से। और अगला जो मैसेज हम तक पहुंचा है ये है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। अगला जो गीत की फरमाइश हम तक पहुंची है, अगले गीत की, ये है कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। सांगली ज़िले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाह सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख हमें ये मैसेज लिख रहे हैं। गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा। ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया हमें ये मैसेज लिख रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है कांड से मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी, रोशन जहान सिद्दीकी, विष्णु अग्रवाल। और अगला जो मैसेज हम तक पहुंचा है फरमाइशी गीत का वो है अधिकारी निवास मिलन विहार जीएमएस रोड देहरादून से राजेश्वरी सागर, और ये सुनना चाहते हैं पापा कहते हैं फिल्म से ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं। और 11:54 और 30 सेकंड्स हो चुके हैं, तो ये कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए।

कानेरा मोहल्ला पटियाला से ये मैसेज हमें लिख भेजा था बत्ता परिवार ने। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है, ये है एस एम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम और नजमुल होदा। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद ने ये मैसेज हमें लिखा था। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से हमें लिख भेजा था ये मैसेज। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से ये मैसेज हमें मिला था। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक, बलवीर सिंह ने ये मैसेज हमें लिख भेजा था। यूपी जिला सहारनपुर गाँव खरीवंश से सोनू हटवाल, रेखा हटवाल, ऋषभ हटवाल और स्वाति हटवाल, विश्व हटवाल और इनका पूरा परिवार ये मैसेज हम तक पहुंचे थे। आपका नाम आज शामिल नहीं हो पाया तो माफी चाहूंगी, आज नहीं तो अगली बार। आप भेजते रहिए संदेशों के माध्यम से अपना प्यार। और इसी के साथ मुझे यानी पुष्पा कुंडीर को कार्यक्रम संपन्न करने की

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ESI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. The two leaders will also address the European Round Table for Industry alongside European Commission President Ursula von der Leyen. This visit is a third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. Yesterday, in the second leg of the Prime Minister's tour, India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to a strategic partnership following talks between Prime Minister Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. India has strongly condemned attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz, calling them unacceptable. India's permanent representative to the UN, P. Harish, said targeting civilian crew and disrupting freedom of navigation cannot be justified. He was speaking at a special meeting of the United Nations Economic and Social Council on safeguarding global energy and supply flows.
3: Targeting of commercial shipping, endangering civilian crew, impeding freedom of navigation in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. Open and predictable trade flows must be preserved and fragmentation avoided. Coordinated efforts are needed to stabilize energy markets and support countries facing external and fiscal pressures. Strengthening multilateral financial support mechanisms will also be critical in this regard. This crisis underscores the importance of combining immediate response with long-term transformation.
0: Mr. Harish's remarks came days after an India-flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. A major rail accident was averted in Ratlam, Madhya Pradesh this morning. Fire broke out in the B1 coach of the Thiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express, train number 12431. The incident took place between Luni Richa and Vikramgarh Alot stations in the Kota division at around 5:20 a.m. Ratlam Railway Division's Public Relations Officer Mukesh Kumar informed there has been no casualty in this incident. All passengers in the coach were safely evacuated. No passenger or railway staff was injured. The cause of the fire is being investigated. The field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 have commenced in 5 states and union territories. These states and union territories are Rajasthan, Meghalaya, Maharashtra, Jharkhand and Municipal Corporation of Delhi area in Delhi NCT as part of the ongoing nationwide census exercise. Meanwhile, house-to-house house listing operations by enumerators are presently in progress in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Telangana and Uttarakhand. The World Health Organization, WHO, has declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo and Uganda a public health emergency of international concern. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced the decision after more than 300 suspected cases and 88 deaths were reported. WHO, in a social media post, clarified the outbreak does not meet the criteria for a pandemic emergency like COVID-19 and advised against closing international borders. World Hypertension Day is being observed today globally. The theme for this year is Controlling Hypertension Together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer.
4: The Indian Meteorological Department said that the southwest monsoon has advanced into some parts of Arabian Sea, Bay of Bengal, many parts of Andaman Sea and Andaman Islands and entire Nicobar Islands. According to the IMD, southwest monsoon is likely to set in over Kerala on 26th of this month. Meanwhile, the weather agency has predicted heat wave conditions in Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha tomorrow. And that is the end of this news bulletin.

0: FM 14.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। दोपहर के 12:10 हुए हैं और ये समय है न्यूज हेडलाइंस का।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुफ्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। केंद्र सरकार के स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत राशन कार्ड सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू किया गया। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। बागेश्वर जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने आगामी मॉनसून से निपटने के लिए सभी विभागों को सतर्कता व आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सूचना आयुक्त दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि सूचना का अधिकार आमजन तक पहुंचाना आयोग का मूल उद्देश्य है। चमोली में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोशीमठ में राष्ट्रीय आपदा बचाव दल ने प्राकृतिक मानवजन्य विपदाओं और दुर्घटनाओं के समय किए जाने वाले जीवन रक्षा उपाय के गुर सिखाए हैं। पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल के बाद 11 पुलिस उपाधीक्षक के तबादले किए गए हैं। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने एसएससी की ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। और राज्य के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 14.5 MHz पर। 12:12 का समय अब प्रस्तुत है असमिया भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।
2: बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
3: जी हाँ।
2: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
3: ए
2: माती रे मोरो मोते, माती के सुमिलो, माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन जी कैसे, ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी आकी, दोबारा आकी आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते हैं वहां ह की तरह से, तो आकाश ये ह और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो। दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर ख नहीं बोलना, ह खागोर तोलीर, खागोर

0: मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आ गया है आहा आहा, फिर मातिर बुकुत,
1: मातिर बुकुत,
0: हां मातिर बुकुत, मौनोर मालोती,
1: मालोती
0: बूटोलो,
1: बूटोलो
0: मौनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा एई माती रे मोरो मोते, फिर दूसरा अंतरा है मौनोर कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे
0: हुरोर, हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे
0: पापोरी रे आजी
1: आजी।
0: इतना हो गया ना?
1: जी हां।
0: आगे हुकुमार, थापो नाहुजुवा, हुकुमार थापो नाहुजुवा। आगे लिखा है ना?
1: जी
0: हां। हुंदोर,
1: हुंदोर
0: खुदीनोर, खुदीनोर नहीं खनी ख, खुदीनोर,
1: खुदीनोर
0: नौतून,
1: नौतून
0: दृष्टि,
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि,
1: दृष्टि
0: दृष्टि
1: दृष्टि
0: शनि सही बोलना, दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो,
1: कौनो
0: ना हुआ, आगे ना?
1: जी हां।
0: अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं। स्वर दीजिए जरा।

अच्छा आप शुरू से लेंगे सारा गाना है ना, एक दो तीन चार।

असमिया भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी देहरादून है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल मंडल।

0: सारे कार्टून देखता है, मैं भी सारे कार्टून देखता हूँ, ये भी।
1: बच्चों संडे को बाल मंडल में जरूर आना।

बच्चों जय हिंद। बाल मंडल कार्यक्रम में अर्चना दीदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। आशा है आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में व्यस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, हमें खेल कूद में भी दिन के कुछ समय में अपना वक्त गुजारना चाहिए। आइए आज आपसे दीदी खेलों का महत्व विषय पर आधारित एक चर्चा करती है। तो बच्चों, एक समय था जब हमारे बड़े हमें कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज का दौर काफी बदल चुका है। आज खेलों का महत्व जो समझ रहा है ना, वो उसमें अपने करियर को बिल्ड कर रहा है। आपने आजकल आईपीएल क्रिकेट मैच में 15-16 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी का नाम जरूर सुना होगा, जो अपने क्रिकेट खेल की वजह से काफी चर्चित हो रहा है। उसने 3 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और उसके पेरेंट्स का सपोर्ट आज उसको नाम और पैसा दोनों ही दिला रहा है। खेल मात्र अब केवल आपके एंटरटेनमेंट या फिजिकल एक्सरसाइज के लिए ही नहीं, बल्कि इससे आप फाइनेंशियल स्टेटस भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं बच्चे आप लोग। बच्चों, खेल हमें जीवन में अनुशासन, सहयोग और टीम वर्क की इम्पोर्टेंस सिखाता है। जब बच्चे मिलकर खेलते हैं तो उनमें फ्रेंडशिप, टॉलरेंस और लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है। वे नियमों का पालन करना सीखते हैं और साथ ही दूसरों के प्रति आदर सम्मान की भावना भी रखते हैं। खेलों का महत्व हमारे मेंटल डेवलपमेंट में भी बहुत होता है। खेलों से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, हम ज्यादा संयम तथा धैर्य की भावना को सीख पाते हैं, साथ ही हमारे निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार आता है। खेल हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात, खेल हमें हार और जीत में समभाव रखने की बात बताता है। अगर आज हम किसी खेल में हार गए तो कल हम उसी खेल में अपनी मेहनत के बलबूते पे जीत भी सकते हैं। खेलों के माध्यम से हम कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी सीख जाते हैं। आइए इसी बात पर दीदी आपको खेलों का महत्व पर आधारित एक कविता सुनाती है। खेलों से जीवन में आती है नई उमंग, तन रहता स्वस्थ और मन में रहती है अच्छी तरंग। दौड़ना, कूदना, हंसना और खेलना जीवन को खुशियों से भर देता है ये खेलना। पढ़ाई के साथ खेल भी है जरूरी, सफल जीवन की है ये बहुत ही अच्छी मजबूत धुरी। जो खेलों को है अपनाता वो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य है भरपूर पाता। तो बच्चों, दीदी तो आपसे यही कहेगी कि गर्मियों की छुट्टियों में आप अवश्य ही कोई ना कोई हॉबी ऑप्ट करें और मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में खेलों को ज्यादा महत्व दें। आइए, अब समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का, सुनते हैं ये संदेश।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।

0: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने कार्यक्रम बालमंडल में। बच्चों, आज हमने खेलों पर आधारित बात करी थी ना, तो आइए आज आपको इसी पर आधारित एक गीत भी सुनाते हैं। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: अच्छी संगत ना बेहद ज़रूरी होती है। अगर हमारे आसपास अच्छे लोग हों, हमें वो मोटिवेट करते हैं, हम भी उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आज आपको एक वार्ता सुनाते हैं जिसका शीर्षक है बच्चे अच्छी संगत में रहें, और इस वार्ता की वार्ताकार है श्रीमती पूजा डबास। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: बच्चे किसी भी देश और समाज का भविष्य होते हैं। उनका व्यवहार, उनकी सोच और उनका व्यक्तित्व बहुत हद तक उनके आसपास के वातावरण और संगत पर निर्भर करता है। आपने सुना ही होगा, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि इंसान जिस तरह के लोगों के बीच रहता है, उठता बैठता है, उसी तरह की आदतें और विचार उनमें पनपने लगते हैं। बचपन सीखने और समझने की उम्र होती है। इस उम्र में बच्चे चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं और आप जिस सांचे में उन्हें ढालना चाहें, आप आसानी से ढाल सकते हैं। यदि बच्चे ऐसे लोगों के बीच रहें जो मेहनती, ईमानदार और सकारात्मक सोच वाले हैं, तो उनमें भी वही गुण आना लाजमी है। हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा इंसान बने, जीवन में आगे बढ़े और समाज में सम्मान पाए। परंतु यह भी सच है कि बच्चे के व्यक्तित्व को निखारने और बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संगत की ही होती है। यदि बच्चों को अच्छा इंसान, अच्छी संगत मिलती है, तो वे अनुशासित, संस्कारी और जिम्मेदार बनते हैं। वहीं यदि वे गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और वे गलत आदतों की ओर बढ़ जाते हैं। आज का समय पहले से काफी बदल चुका है। पहले बच्चे अधिक समय परिवार और खेल के मैदान में बिताते थे, बड़ों से संस्कार सीखते थे और अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते थे। गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी और दादा दादी के घर सभी भाई बहन इकट्ठे होकर खूब मस्ती करते थे। एक साथ खाना खेलना उन्हें एकता का पाठ ही नहीं पढ़ाता था, बल्कि सभी के साथ कैसे सौहार्द भाव से रहना है इसकी सीख भी देता था। आज का दौर सोशल मीडिया का है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया ने आज बच्चों की मासूम सी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। आज बच्चे महज अपने आसपास के लोगों से ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन दुनिया से भी प्रभावित हो रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे घंटों मोबाइल पर आंखें गड़ाए रहते हैं। आलम यह है कि खाना खाने से लेकर आंख खुलते ही उन्हें सबसे पहले मोबाइल फोन चाहिए। अपनी बात भी इसी शर्त पर मनवाते हैं कि यदि वह कार्य पूर्ण हो गया, तो इस तर्ज पर उन्हें फिर मोबाइल पर गेम खेलने की अनुमति मिल जाएगी। वे जो वीडियो देखते हैं, जिन लोगों को फॉलो करते हैं और जिन बातों को सुनते हैं, उनका सीधा असर उनके मन और व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए आज के समय में संगत का अर्थ महज दोस्त ही नहीं, बल्कि डिजिटल वातावरण भी है, और इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार हम माता पिता भी हैं। आज हम खुद इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास अपने बच्चों के लिए ही समय नहीं है। हम अपना काम करना चाहते हैं और उस काम में कोई दखल ना हो, तो बदले में हम बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं और धीरे धीरे उनकी ये आदत लत में बदल जाती है। पूरे दिन में हम अपने बच्चों के पास बैठकर कितनी बार यह पूछते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहा, उन्हें क्या अच्छा लगा, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। ऐसा ना करने के अभाव में बच्चे हमसे दूर होते चले जाते हैं। एक दौर था जब पहले बच्चे कहानी सुनकर सो जाया करते थे, परंतु अब डिजिटल मीडिया के दौर में देर रात तक हम फोन में ही व्यस्त रहते हैं और बच्चों से कहते हैं कि वो सो जाएं। क्या यह न्याय संगत है? इस प्रश्न का जवाब हमें खुद ही तलाशना है। इसी के साथ हमें इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि हमारे बच्चों की दोस्ती किस तरह के बच्चों के साथ है। अच्छी संगत बच्चों को जीवन में सही दिशा देती है। अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे पढ़ाई में मदद करते हैं, अच्छे व्यवहार की सीख देते हैं और मुश्किल समय में साथ खड़े भी रहते हैं। ऐसे दोस्त बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। यदि किसी बच्चे के दोस्त मेहनती होंगे, तो वह भी मेहनत करना सीखेगा। यदि उसके दोस्त ईमानदार होंगे, तो वह भी सच बोलना सीखेगा। यदि उसके दोस्त अनुशासित होंगे तो वह भी नियमों का पालन करेगा। यही कारण है कि अच्छे मित्र जीवन की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। इसी के विपरीत बुरी संगत बच्चों को धीरे धीरे गलत रास्ते पर ले जा सकती है। कई बार बच्चे महज दोस्तों के दबाव में आकर गलत आदतें अपना लेते हैं,

0: पिता को चाहिए कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं, उनसे खुलकर बात करें और उनकी समस्याओं को समझें। जब बच्चे अपने माता पिता से खुलकर बात करते हैं तो वे गलत रास्ते पर जाने से बच जाते हैं। परिवार का अच्छा माहौल बच्चों के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। यदि घर का वातावरण अच्छा होगा, परिवार में प्यार और सम्मान होगा, तो बच्चे भी बड़ी संस्कार ही सीखेंगे। इसी के विपरीत यदि घर में हर समय लड़ाई, झगड़ा या नकारात्मक माहौल रहेगा तो उसका असर बच्चों के मन पर जरूर पड़ेगा। आज हम अपने काम में या मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास अपने बच्चों के लिए ही समय नहीं है। हम सोचते हैं कि महज अच्छे स्कूल में फीस भर देने और हर सुविधा देने से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, पर हम यह भूल जाते हैं कि बच्चों को महज सुविधाओं की नहीं बल्कि समय और प्यार की भी जरूरत होती है। बच्चों को डांटने या हर समय रोकने से समस्या का समाधान नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि उन्हें प्यार से समझाया जाए। यदि बच्चा गलती करे तो उसे यह समझाया जाए कि वह क्यों गलत है। यहाँ शिक्षकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्कूल महज पढ़ाई का स्थान नहीं है बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र भी है। शिक्षक बच्चों को जीवन के मूल्य सिखाते हैं। वे उन्हें अनुशासन, सम्मान और मेहनत का पाठ पढ़ाते हैं। स्कूल में होने वाली खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सिखाती हैं। इससे उनमें सहयोग और सकारात्मक सोच विकसित होती है। समाज की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे समाज को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। यदि समाज में अपराध, हिंसा और नशे जैसी चीजें बढ़ेंगी तो बच्चों पर भी उनका गलत असर पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां बच्चे सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल में बड़े हो सकें। आज एक और बड़ी समस्या है, बच्चों में अकेलापन। कई बच्चे अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते। ऐसे में वे गलत लोगों के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार किया जाए ताकि वे बिना डर के अपनी बात को कह सकें। अच्छी संगत बच्चों को आत्मविश्वास बनाती है। ऐसे बच्चे जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करते हैं। वे दूसरों की मदद करना सीखते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमें बच्चों को किताब पढ़ने, खेल खेलने और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उनका ध्यान सकारात्मक कार्यों में लगा रहेगा। मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन उसका संतुलित उपयोग बहुत जरूरी है। माता पिता को यह देखना होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और किस तरह की चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना भी बहुत आवश्यक है। उन्हें बचपन से ही सच बोलने, बड़ों का सम्मान करने और दूसरों की मदद करने की सीख दी जानी चाहिए। एक अच्छी संगत बच्चे के जीवन को बदल सकती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अच्छे मार्गदर्शन और अच्छे मित्रों ने लोगों को महान बनाया, वहीं बुरी संगत ने कई लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि बच्चे देश का भविष्य है। यदि आज हम उन्हें सही दिशा देंगे तो कल वे एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। हमें बच्चों पर केवल अंक लाने का दबाव नहीं डालना चाहिए बल्कि उन्हें अच्छा इंसान बनने की शिक्षा भी देनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों और सही सोच से भी मिलती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों की अच्छी संगत केवल उनके वर्तमान को ही नहीं बल्कि उनके पूरे भविष्य को प्रभावित करती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिम्मेदार, संस्कारी और सफल नागरिक बने तो हमें उन्हें अच्छा वातावरण और सही मार्गदर्शन देना होगा। याद रखिए, अच्छे दोस्त और अच्छी संगत जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। धन्यवाद।
1: प्यारे बच्चों, आप समय हो चला है हमारे नन्हे मुन्ने साथियों से बातचीत करने का, तो आइए

0: बात करते हैं एक प्यारी सी बच्ची से जो अपना नाम स्वयं बताएंगी। आपका नाम क्या है?
1: प्रभा।
0: प्रभा, प्रभा बहुत प्यारी सी हो और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बोलती हो। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: एट्थ क्लास में।
0: तो कैसा रहा आपका रिजल्ट इस बार का?
1: बहुत अच्छा रहा।
0: तो आगे आप क्या करना चाहती हो?
1: मैं म्यूजिक से करना चाहती हूँ।
0: अच्छा, म्यूजिक से। तो आज आप कुछ म्यूजिक वाला लेकर आई हो या कुछ और सुनाने चाहती हो?
1: मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
0: कविता सुनाना चाहते हो? सुनाइए, आपकी कविता का स्वागत है।

0: प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हों, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास कहे जाए प्रतिपल, इतिहास कहे जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीत निधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे।
1: बहुत खूब,
0: धन्यवाद,
1: एक बार जोरदार तालियां। प्रभा, हमें लग रहा है कि आप हमारे लिए कुछ और भी लेकर आए हो।
0: जी मैम।
1: हाँ तो बताइए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। लेकिन
0: जी मैम, मैं एक प्रेयर लेके आई हूँ, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु।
1: अरे वाह, सुनाइए।
0: सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं

0: हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। धन्यवाद आप सभी का।
1: एक बार जोरदार तालियां। आइए बच्चों चलते हैं एक और प्यारी सी प्रस्तुति की तरफ। आपका नाम क्या है?
2: प्रियंका यादव।
1: प्रियंका यादव, प्रियंका आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: क्लास 8 मैम।
1: क्लास 8 में?
2: यस मैम।
1: अच्छा आप कहाँ से आए हो?
2: मैम वाराणसी से।
1: वाराणसी से, और कहाँ पढ़ते हो आप?
2: कन्या गुरुकुल मैम।
1: अच्छा कन्या गुरुकुल में, तो आपको गुरुकुल में रह के कैसा लगता है?
2: मैम बहुत अच्छा।
1: अच्छा लगता है?
2: यस मैम।
1: तो आप आगे जाके क्या बनना चाहते हो?
2: मैम म्यूजिक प्लेयर।
1: म्यूजिक प्लेयर। अच्छा प्रभा भी अभी यही बोल रही थी, यानी कि आप दोनों एक ही जगह से आए हुए हो, है ना? तो आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो?
2: मैम एक प्रेयर है।
1: प्रेयर है, सुनाइए, स्वागत है।
2: इतनी

0: धन्यवाद।
1: बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी प्रियंका, और प्रियंका बच्चों बड़ी तन्मयता से गा रही थी। बहुत ही अच्छे सुरों में आपने गाया, और हम भी आप सबसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करिए, कभी भी भूल कर भी कोई भी गलती ना करिए।
2: तो बच्चों ये था हमारा आज का बालमंडल कार्यक्रम। हम आशा करते हैं आपको आनंद आया होगा, आपने अच्छी अच्छी बातों को सीखा होगा और अपने जीवन में उनको अपनाने के लिए आप अवश्य प्रेरित हुए होंगे। तो बच्चों अगर आप भी बालमंडल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शनिवार 3:30 बजे आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियोज में आप आइए, हम आपकी बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे, और 12:30 बजे रविवार को मिलकर इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। आप अर्चना दीदी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। जय हिंद।
3: साड़ी कार्टून देखता है, मैं भी साड़ी कार्टून देखता हूँ। ये भी
4: बच्चों संडे को बालमंडल में जरूर आना।

0: बालमंडल, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी IGL ने CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से। 1:05 हुए हैं, अब समय प्रादेशिक समाचार का।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुई। कल खुलेंगे कपाट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में पर्यावरण

0: संकल्प साइकिल रैली का शुभारंभ किया और भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। श्री मोदी ने ये यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री महामहिम श्री उल्फ क्रिस्टन के निमंत्रण पर हो रही है। 2018 में श्री मोदी की स्वीडन यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंध केवल खरीदार विक्रेता तक सीमित नहीं है, बल्कि वे साझा मूल्यों, एक दूसरे की खुशहाली, औद्योगिक समृद्धि और साझा विकास से भी जुड़े हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान लीड आईटी के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, जिसमें प्रौद्योगिक हस्तांतरण, साझा विकास और वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के लिए एक औद्योगिक मंच पर जोर दिया गया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से दोनों पक्षों के लिए अभूतपूर्व बाजार उपलब्ध हुआ। इससे भारत से कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भारी वृद्धि को बल मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ यूरोप से उच्च तकनीकी सेवा और निवेश के द्वार खुलेंगे। पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली आज विधि विधान व पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। डोली आज रात्रि विश्राम को पनार बुग्याल पहुंचेगी। कल 18 मई को सुबह रुद्रनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 12:45 पर भगवान रुद्रनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी सहित देश विदेश से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु मौजूद रहे। रुद्रनाथ के मुख्य पुजारी हरीश भट्ट ने बताया कि 18 मई को दोपहर में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
1: ज्येष्ठ संक्रांति के दिन भगवान रुद्रनाथ जी की विग्रह मूर्ति वो अपने गर्भगृह से बाहर आकर यहाँ प्रांगण में रखी गई थी। 15 और 16 तारीख को यहाँ पे सबके लिए दर्शनार्थ रख के आज 17 तारीख को हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और 18 तारीख मई 11:30 और 12 के बीच में सभी श्रद्धालुओं के लिए चतुर्थ केदार, जहाँ भगवान शिव के मुख्य दर्शन है, सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे।
0: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि आस्था का जो सैलाब उमड़ा है, उससे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होगी।
2: भगवान रुद्रनाथ जी की डोली यहाँ पर प्रस्थान हुआ है। इस बहुत ही पावन अवसर पर मुझे माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा हूँ कि आस्था और श्रद्धा का जो समुद्र है वो चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो ध्वजवाहक के रूप में हमारी सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: बता दें कि रुद्रनाथ मंदिर ग्रीष्मकाल में मई से लेकर अक्टूबर माह तक 6 माह के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। शीतकाल में 6 माह रुद्रनाथ भगवान की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर में की जाती है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाचार दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिक एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वर्गीय हरबंस कपूर की स्मृति में केंद्रीय विद्यालय ONGC ग्राउंड देहरादून में पर्यावरण संकल्प साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत एवं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। श्री जोशी ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण देना हम सभी की जिम्मेदारी है। भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत राशन कार्ड सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम URCMS पोर्टल लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब नागरिक घर बैठे नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने, हटाने और अन्य आवश्यक संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। सरकार ने पुराने RCMS पोर्टल को आधुनिक तकनीक और सरल प्रक्रियाओं के साथ अपग्रेड कर URCMS पोर्टल तैयार किया है। इससे राशन कार्ड संबंधी सेवाएं तेज, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक होंगी। अब लोगों को राशन कार्ड बनवाने में उसमें संशोधन कराने के लिए दफ्तरों और राशन दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि नई व्यवस्था से राशन कार्ड सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों के समय की भी बचत होगी।
4: शासन ने जो है जो राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है उसको अपडेट किया है, RCMS को URCMS किया है, उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फ़ोटो, इंडिविजुअल फ़ोटो भी लगने लगी है, लगानी मैंडेटरी हो गई है, और सभी के मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा और जो है उससे ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। इस तरह से जो है राशन कार्ड के लिए जो है कोई भी जो है जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनके यथावत चलते रहेंगे। उनके लिए EKYC का है वो दूसरा प्रोविजन है, वो सब लोग कर ही रहे हैं, मैक्सिमम हमारा हाँ वो भी चुका है, और जिनके बने हुए उनको कुछ नहीं करना।
0: भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली द्वारा खेल कोटा के अंतर्गत आरक्षी सामान्य ड्यूटी के कुल 404 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया गया है। कमांडेंट कार्यालय 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ द्वारा इस संबंध में जिला खेल अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी और जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को पत्र भेजकर जनपद के सभी खेल प्रशिक्षण संस्थानों, स्टेडियमों, खेल अकादमियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में इसका व्यापक एवं प्रभावी प्रचार प्रसार करने का अनुरोध किया गया है, ताकि सीमांत क्षेत्र के अधिक से अधिक योग्य खिलाड़ी इस अवसर का लाभ उठा सके। भर्ती की पूरी प्रक्रिया 2 मुख्य चरणों में आयोजित की जाएगी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार में नगर निगम द्वारा निर्मित रजत जयंती पार्क, बुद्धा पार्क का लोकार्पण किया। ये पार्क नगरवासियों, युवाओं एवं बच्चों के लिए एक सुंदर, स्वच्छ, हरित एवं प्रेरणादायी सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। श्री बलूनी ने कहा कि ये पहल केवल शहर की सौंदर्यता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली और जन सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में ये पार्क स्थानीय नागरिकों के लिए संवाद, विश्राम और सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुई। कल खुलेंगे कपाट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में पर्यावरण संकल्प साइकिल रैली का शुभारंभ किया। और भारत सरकार की स्मार्ट PDS योजना के तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
3: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

साहेब बीवी और गुलाम, इस फिल्म से हमने एक गीत लिया था, स्वर गीता दत्त का था, शकील बदायूनी का लिखा गीत था और संगीत हेमंत कुमार का था। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जवानी दीवानी फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ है, आर डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी का गीत।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आरडी बर्मन के संगीत से सजा ये अगला गीत सुनिए, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, शब्द आनंद बख्शी के और फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा।

0: हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में। मजरूह के बोल थे और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। SH बिहारी ने गीत को लिखा है, OP नैयर का संगीत है और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

0: आर्टिलरी रेजिमेंट की 81वीं फील्ड रेजिमेंट में 22 सालों तक उन्होंने देश की सेवा की। साल 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के दौरान हवलदार के पलानी लद्दाख में तैनात थे। चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और कर्तव्य की बेड़ी पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए।
1: आशा रहे

0: उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम देश के वीर सपूत शहीद हवलदार के पलानी के त्याग, समर्पण और शहादत को नमन करते हैं।
1: जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो।

तो कार्यक्रम सैनिकों के लिए के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी पुष्पा पुंडीर को दीजिए अनुमति। सैनिक साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए FM 100.5 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। दोपहर के 3 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गाने नए तराने।

याशिका सिक्का की यह आवाज़ थी। फिल्म का नाम था अमर सिंह चमकीला। संगीत एआर रहमान का था। तारा रंपम फिल्म से सुनिए कार्यक्रम का यह अगला गीत, शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ें।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर।

तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल की ये आवाज़ें थी। फिल्म का नाम था खानदानी शफाखाना। अब सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। प्रीतम का संगीत है और एजेंट विनोद फिल्म का नाम।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: गाने नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से।

सोनू निगम और अलका याग्निक का ये युगल स्वर आप सुन रहे थे बॉर्डर फिल्म से। जावेद अख्तर का लिखा गीत था और अनु मलिक का संगीत। अगला नगमा दाग द फायर फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

दिल चाहता है। इस फिल्म का यह गीत था जिसे आवाजें दी थी कविता कृष्णमूर्ति ने और शान ने। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी और तर्ज शंकर एहसान लॉय की थी। अब रेमो फर्नांडिस, स्वर्णलता और सुरेश को सुनिए बॉम्बे फिल्म से मौसिकी ए आर रहमान की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: गोलमाल फिल्म से प्रोग्राम गाने नए तराने में आज का अंतिम गीत शेखर रविजयानी और स्नेहा पंत की आवाजों में विशाल डडलानी का गीत और विशाल शेखर का संगीत।

0: इसी के साथ कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। शाम के 4 बज रहे हैं और ये वक्त है FM न्यूज हेडलाइंस का।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीता कांडपाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप सीमांत गांव को पर्यटन कौशल और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में हर्षिल घाटी के बगोरी गांव में वाइब्रेंट विलेज नेचुरलिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चमोली की प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत कुल 74,23,70,000 रूपये के परिव्यय योजनाओं को अनुमोदित किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अंतर्गत देहरादून की माड़ी लंबी धार काट मैकेंजी कंपनी गार्डन मोटरमार्ग के सुरक्षा दीवारों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। कल 18 मई को 12:45 पर भगवान रुद्रनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वर्गीय हरबंस कपूर की स्मृति में देहरादून के केंद्रीय विद्यालय ONGC ग्राउंड में पर्यावरण संकल्प साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। भारत सरकार की स्मार्ट PDS योजना के तहत राशन कार्ड सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम URCMS पोर्टल लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल SSB नई दिल्ली द्वारा खेल कोटा के अंतर्गत आरक्षी सामान्य ड्यूटी के कुल 404 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया गया है। चंपावत जिले में जिलाधिकारी मनीष कुमार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय महत्व के भारत जनगणना 2027 अभियान का कार्य संचालित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप इस बार जनगणना की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल स्वरूप प्रदान किया गया है, जिससे डेटा संकलन में पारदर्शिता, शुद्धता एवं त्वरित विश्लेषण सुनिश्चित हो रहा है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। शाम के 4:02 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित अजय पोहनकर का गाया ख्याल। आप प्रस्तुत करेंगे राग बागेश्वरी और राग जय जवंती। तो श्रोताओं, पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन राग बागेश्वरी में।

अभी आप सुन रहे थे राग बागेश्री में पंडित अजय पोहनकर का गाया ख्याल। आइए आप सुनते हैं पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन राग जय जवंती में।

अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर का गाया ख्याल राग जय जयवंती में। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। शाम के 4:30 हुए हैं। आप सुनिए कार्यक्रम एक कलाकार।

कार्यक्रम एक कलाकार में आपका स्वागत अभिनंदन। आज का अंक आप सुन रहे हैं पुष्पा पुंडीर के साथ, और आज के हमारे कलाकार हैं, आज के इस कार्यक्रम के कलाकार हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा, जिन्होंने अपनी फिल्मों से बॉलीवुड को नई पहचान दी।

13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे प्रकाश मेहरा का बचपन बेहद संघर्षों में बीता। कम उम्र में माता पिता का साथ छूट गया और मात्र 13 रुपए लेकर वो मुंबई पहुंचे। फिल्म सेट्स पर छोटे मोटे काम करते हुए उन्होंने धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाए।

साल 1968 में प्रकाश मेहरा ने हसीना मान जाएगी फिल्म से निर्देशन की शुरुआत की, लेकिन असली सफलता उन्हें साल 1973 में फिल्म जंजीर से मिली। उस समय अमिताभ बच्चन लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, फिर भी प्रकाश मेहरा ने उन पर भरोसा किया। ये फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और हिंदी सिनेमा को मिला एंग्री यंग मैन।

जंजीर की सफलता के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने साथ मिलकर मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दीं।

प्रकाश मेहरा सिर्फ निर्देशक ही नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक और गीतकार भी थे। उन्होंने हॉलीवुड में फिल्म बनाने की कोशिश कर भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का सपना भी देखा था।

17 मई 2009 को निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी फिल्मों के किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर आकाशवाणी देहरादून की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। हमारे आज के कलाकार थे निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। शाम के 5 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मददगार हैं। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज आबू धाबी स्थित बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। IPL क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल दिनांक 18 मई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। शाम 5:10 पर सुनेंगे आप युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुन पाएंगे शाम 5:45 पर। शाम 7 बजे आज आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गन्ने का लाल सड़न रोग से बचाव विषय पर जगमोहन पोखरियाल से विकास चमोली की बातचीत। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे शाम 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्यांजलि। आज रात्रि 8:15 पर सुनिएगा श्री प्रांगण हल्द्वानी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान एपिसोड। रात्रि 8:20 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत पंकज उदास के स्वर में सुनेंगे आप गजल। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा और अब प्रस्तुत है कल यानी 18 मई 2026 को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कार्यक्रम फिल्म संगीत का समय रहेगा कल दोपहर 1:15 पर, शाम 7:40 पर, रात्रि 8:30 और रात्रि 9:30 पर। सुबह 7:30 पर सुनिएगा कल कार्यक्रम शैल संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए कुमाऊनी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। सुबह 9:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर रीता झा से रमेश चंद्रा की बातचीत। कल सुबह 10:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे समूह स्वर में रोहिलखंडी लोकगीत। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन पाएंगे सुबह 11 बजे। दोपहर 12:12 पर सुनेगा कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में भजन। दोपहर 12:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घर गृहस्थी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कृषि में महिला भागीदारी विषय पर साधना सेमवाल से वार्ता। दोपहर 2:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए फिल्म संगीत।

गीत शाम 4:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन राग यमन में। कल शाम 4:30 पर सुनेगा कार्यक्रम एक कलाकार। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। शाम 7:50 पर कल आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। रात्रि 8:00 सुनेंगे कार्यक्रम हिंदी वार्ता, जिसके अंतर्गत सुनेंगे आप प्रकृति के सुकुमार सुमित्रानंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम और करुणा विषय पर डॉक्टर शांति अग्रवाल से वार्ता। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं और अब सुनिए युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट ऋतु कोटनाला और तहे दिल से स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम युववाणी में। आशा करते हैं आप जहां से भी हमें सुन रहे होंगे एकदम चुस्त और दुरुस्त होंगे। अच्छा, आप सबने सुना होगा ये डायलॉग कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये बॉलीवुड का मशहूर डायलॉग सिर्फ फिल्मों पर ही नहीं दोस्तों, हमारी लाइफ पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। हर इंसान की लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं होती, क्यों? कभी कॉमेडी, कभी ड्रामा, कभी इमोशनल सीन और कभी बड़ा ट्विस्ट। फर्क बस इतना है कि हमारी लाइफ का हीरो कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही होते हैं। अपनी कहानी का हीरो बनने के लिए सबसे पहले दोस्तों खुद पर विश्वास करना जरूरी है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं ना, तभी हम नई चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। इसके साथ साथ मेहनत, अनुशासन और धैर्य भी बहुत जरूरी होता है। रास्ते में असफलताएं आएंगी, लोग आपकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन हीरो तो वही होता है ना जो फिर से गिरकर फिर खड़ा हो जाए। आज की जो मिलेनियल जनरेशन है, जो जेंजी जनरेशन है, वो सोशल मीडिया पर कंपैरिजन और प्रेशर के बीच अक्सर खुद को खो देती है। किसी की परफेक्ट लाइफ, सीमिंगली परफेक्ट लाइफ देखकर लगता है कि शायद हमारी स्टोरी उतनी एक्साइटिंग नहीं है। नहीं, लेकिन असली हीरो वही होता है जो अपने स्ट्रगल्स के बावजूद आगे बढ़ता है। दोस्तों, हीरो बनने के लिए आपको सिक्स पैक या फिर एक फिल्मी एंट्री नहीं चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी मैडनेस चाहिए होती है। देखिए, जिंदगी में फेलियर्स भी आते हैं, प्लान्स कैंसिल होते हैं, लोग साथ छोड़ते हैं और कई बार खुद पर डाउट भी होने लगता है, लेकिन हर डाउनफॉल के बाद कमबैक करना ही असली हीरो वाली वाइब है। एक छोटी सी कविता मुझे याद आ रही है कि राह कठिन हो फिर भी चलना, गिरकर खुद ही फिर संभलना, दुनिया क्या सोचती है छोड़ो, अपनी कहानी का हीरो बनना। हर इंसान के अंदर एक स्पार्क होता है दोस्तों, ज़रूरत बस पहचानने भर की होती है। इसीलिए दूसरों की स्क्रिप्ट को फॉलो करने के बजाय अपनी कहानी आप खुद लिखिए, क्योंकि आखिर में क्लैपिंग भी उसी के लिए बचती है जो अपने डर से लड़कर आगे बढ़ता है। दोस्तों, तो याद रखिए, मेन कैरेक्टर एनर्जी जो है वो सबके अंदर होती है, बस उसे बिलीव करना पड़ता है। और ऐसे एक मेन कैरेक्टर एनर्जी है हमारे आज के ट्रैक के अंदर, जिसे हमने लिया है फिल्म रॉकस्टार से। इसे गाया है मोहित चौहान ने।

वेलकम बैक दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे कई चीज़ों के बारे में। आज के समय में बच्चे मोबाइल गेम्स और इम्पोर्टेड टॉयज़ भी इतने बिजी हो गए हैं ना कि हमारे पुराने भारतीय खिलौने कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। लेकिन सच कहें तो भारत के ट्रेडिशनल खिलौनों में सिर्फ खेल नहीं बल्कि हमारी कल्चर, क्रिएटिविटी और इमोशंस भी छुपे होते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से मार्केट किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकते हैं। पहले के समय में मिट्टी के घोड़े, लकड़ी की गाड़ियाँ, कपड़े की गुड़िया और लट्टू हर बच्चे के फेवरेट होते थे। ये खिलौने सिंपल होते थे लेकिन इमेजिनेशन को बढ़ाते थे। आज लोग फिर से इको फ्रेंडली और हैंडमेड चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि ट्रेडिशनल टॉयज़ की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। कर्नाटक के चन्नपटना टॉयज़, वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और राजस्थान की कठपुतली डॉल सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी काफी पसंद किए जाते हैं। ये टॉयज प्लास्टिक की तरह हार्मफुल नहीं होते और आर्टिजन्स को भी रोजगार देते हैं। अगर इन्हें सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स और क्रिएटिव पैकेजिंग के साथ प्रमोट किया जाए तो ये इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बन सकते हैं। आज के मिलेनियल्स और जेंजी को एस्थेटिक और देसी वाइब बहुत अच्छी लगती है। इमेजिन कीजिए एक क्यूट सा वुडन टॉय कैफे डेकोर में रखा हो या किसी इन्फ्लुएंसर की रील में ट्रेडिशनल स्पिनिंग टॉप दिखाई दे। चीज़ें वायरल होने में देर तो नहीं लगती। जो चीज़ें अपनी जड़ से जुड़ी होती है ना वही सबसे अलग दिखती है। बॉलीवुड भी हमें यही सिखाता है कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है और कभी कभी ये छोटी बातें बड़ा बिजनेस आइडिया बन जाती है दोस्तों। सरकार भी वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रही हैं। अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स थोड़ा इनोवेशन और स्मार्ट मार्केटिंग जोड़ दें तो भारत के पुराने खिलौने फिर से हर घर की पहचान बना सकते हैं। और ट्रेडिशनल खिलौने सिर्फ खेलने की चीज़ नहीं है बल्कि भारत की पहचान है। ज़रूरत बस इतनी है कि हम उन्हें पुराने ज़माने की याद समझने की बजाय फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। और इसके बाद आपके लिए ये ट्रैक फिल्म केदारनाथ से, जिसे गाया है अमित त्रिवेदी ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मज़ा आ रहा होगा और अब समय हो चला है एक बहुत ही खास सेगमेंट का, जिसमें हम करते हैं अपने दोस्तों से बात और जानते हैं उनके व्यूज़ अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग मुद्दों के बारे में। और आज हमारा मुद्दा है धार्मिक पर्यटन में युवाओं का रुझान, जो कि अपने आप पे बहुत ही खास है। तो चलिए बात करते हैं अपने दोस्तों से। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। और मैं जान सकती हूँ आपका नाम और आप कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं?
3: मेरा नाम स्वाति है। पहले तो हर हर महादेव आपको जी। मैं स्वाति दिल्ली से बात कर रही हूँ।
2: ओके स्वाति, क्या करती हैं आप?
3: मैं फ्रीलांसिंग में बात करती हूँ।
2: बहुत बढ़िया स्वाति, आज हम बात कर रहे हैं धार्मिक स्थलों की ओर युवाओं के रुझान के बारे में। जो हमारी यंग जनरेशन है, हम देख रहे हैं कि काफी वो इन स्पिरिचुअल प्लेसेस की तरफ आजकल मूव कर रहे हैं, तो ये जो पर्यटन है वो बढ़ रहा है, राइट? जी, तो आप खुद भी ट्रैवल करती रहती है क्या रिलीजियस प्लेसेस पे?
3: हाँ जी, मैं 2019 से ट्रेवल कर रही हूँ। तो मेरा मेनली क्या होता है, अभी मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ ज्योतिर्लिंग को, तो बस वो ही चल रहा है मेरा, ज्योतिर्लिंग चल रहा है। देखो क्योंकि पर्सनली लाइक ऐसी पर्सन हूँ जो धार्मिक स्थल में जाना पसंद करती।
2: और इसके अलावा आप अभी कहाँ कहाँ पर ट्रैवल करके आई हैं रिसेंटली, ये आप मुझे?
3: हाँ, मैंने सोमनाथ चली थी, गुजरात में भी था, नागेश्वर महादेव का मंदिर है गुजरात में, ये होती महाकालेश्वर, ओम कालेश्वर, केदारनाथ और काशी विश्वनाथ, द्वारकाधीश,
2: यहाँ
3: सब इन सब जगहों में गई हूँ।
2: ओके, और इनमें सबसे फेवरेट आपका कौन सा रहा है?
3: फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मन की शांति और एक कनेक्शन होता है ना भगवान के साथ, तो वो सब तो एक ही जगह में फील हो जाता है। तो जब हम गर्भगृह में जाते हैं तो मुझे तो ऐसे कुछ अलग लगता नहीं है कि मैं किसी दूसरे मंदिर में, मुझे लगता है कि मैं एक ही जगह में आई हूँ घूम कर।
2: बहुत बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं इन चीज़ों को लेकर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी, क्या धार्मिक पर्यटन यानी रिलीजियस जो टूरिज्म है वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को समझने का एक अच्छा मीडियम है? मतलब आपको लगता है कि उससे लोग अपनी परंपराओं से जुड़ रहे हैं?
3: हाँ, ये क्यों नहीं, बहुत अच्छा मतलब धार्मिक आपका भारतीय संस्कृति है हमारी, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है समझने के लिए, क्योंकि वो ये भारत में ना अलग अलग भाषाएं संस्कृत का मिल रही। जब आप धार्मिक यात्राएं करते हो तो आप अपने लाइफ में ना एक चेंजेस देखते हो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, बट आप उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ना आपको एक शक्ति मिलती है, जो डिवाइन पावर होती है, भगवान से कनेक्ट फील करते हैं या कनेक्शन बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि चीजें ना बहुत इजी हो जाती है हैंडल करने की। आज के टाइम पे ना लोग जा रहे हैं, लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तभी जा रहे हैं, और अच्छी चीज है, मतलब देखा देखी करके बेशक जा रहे हैं लोग, बट एटलीस्ट जा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस चीज को समझने के लिए ना वहाँ पहुंचना जरूरी है।
2: कोई आइटनरी अगर आप बताना चाहें कि अगर कोई बिगिनर हो और वो इस तरीके का टूरिज्म शुरू करना चाहे, तो आप कुछ टिप्स उन्हें देना चाहें तो ऐसा कुछ भी आप बता सकते हैं?
3: मैं सिर्फ यही करनी थी, बट हाँ मैं यही चीज बोलूंगी कि एक बार ही स्टार्ट करो और जब जाओ तो कोशिश करो कि कैमरा खोल के उस चीज को कैप्चर मत, आपको कनेक्शन बनाने के लिए ना कैमरे को साइड करना पड़ेगा, आपको ना वो कनेक्शन बनाने के लिए आपको मन को स्थिर करना पड़ेगा। जहाँ पर आप फोन उठा के वीडियो बनाओगे या शूट करोगे तो आप वो कनेक्शन फील ही नहीं कर पाओगे, तो पहले मन को स्थिर करके अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा भगवान के साथ।
2: और आपको क्या लगता है कि सोलो ट्रिप्स और ग्रुप ट्रिप्स में युवाओं का धार्मिक स्थलों के प्रति क्या आपका एक्सपीरियंस है वो अलग होता है? मतलब अगर हम अकेले जाएं क्या वो एक अलग एक्सपीरियंस है, और अगर हम फ्रेंड्स के साथ जाएं, हमारी फैमिली के साथ जाएं, तो क्या आपको लगता है एक्सपीरियंस में डिफरेंस होगा? आप
3: मतलब मुझे पर्सनल लगता है कि सोलो ट्रिप जो है ना वो मन की शांति के लिए और खुद को अनुभव, मतलब अपने अपनी बॉडी को या अपने माइंड को समझने के लिए, उसको समझने के लिए ना बहुत जरूरी है
2: जी।
3: आप जब ग्रुप में जाते हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, अलग लोगों के अलग विचारों से आप सामना करते हो, हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि चलो हम ये करते वो करते। जब आप सोलो ट्रिप करते हो ना तो फिर आपका ईश्वर चलता है
2: जी।
3: तो वहां पर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं होता। तो मुझे लगता है कि सोलो ट्रैवलिंग सबसे बेस्ट है।
2: तो आप क्या खुद सोलो ट्रिप्स पे गए हैं कभी?
3: एक दो बार, पर मैंने वही बोल दी, मैं ग्रुप के साथ जब मैं गई हूँ मैंने उससे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस सोलो ट्रैवलिंग में किया।
2: बहुत ही मुझे सारी चीजें आपके साथ बात करके जानने को मिली हैं। एंड इसके बाद मैं बस आपसे एक ही सवाल चाहूंगी कि आप हमारे जो यूथ है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे इस चीज के रिगार्डिंग?
3: मैं यूथ को बस यही एडवाइस दूंगी, आप एक बार विजिट करना स्टार्ट करो, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएगा, वो आप खुद ही फील करो। आज के टाइम पे ना लोग ना इतने व्यस्त है, वो अपना ना मेंटल पीस को ना समझना चाहते ही नहीं है। आजकल इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोगों को मेरे को लगता है कि जाना चाहिए धार्मिक स्थल में, वहां पर एक ऐसी एनर्जी होती है जब आप उनसे कनेक्ट करोगे ना तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे, खुद ब खुद धीरे धीरे करके चेंजेस देखोगे। और बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है अपने इतिहास के बारे में जानना, अपने कल्चर के बारे में जानना, वहां से हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ गलत करने को भी मिलेगा, सीखने को जरूर मिलेगा। और बस मैं यही बोलूंगी कि आप जब जाते हो किसी भी धार्मिक स्थल में तो वहाँ कोशिश करो कि आप ना ब्रह्मचर्य का पालन करो। और आजकल मैं देख रही हूँ कि जैसे मैं गंगा किनारे जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ बियर की बोतल पड़ी रहती है, दारू की बोतल पड़ी रहती है, स्मोकिंग करते हैं लोग ओपनली। तो ये चीजें ना हमें समझनी पड़ेगी कि ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी जो पूजनीय नदियां हैं जैसे माँ गंगा हो गई है ना, उसके किनारे में बैठ के स्मोकिंग करना, मुझे पर्सनली लगता है कि चाहे कितना भी आप कूल बन लोगे ना बड़ी गलती है
2: जी। बिल्कुल, बहुत बहुत बहुत थैंक यू। हाय, आप कहाँ से बात कर रही हैं हमारे साथ और आपका शुभ नाम जान सकती हूँ प्लीज?
3: मेरा नाम तानिया जियाल है और मैं गुरुद्वारा से बात कर रही
2: हूँ। तानिया, आप क्या करती हैं वैसे?
3: मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रही हूँ।
2: अच्छा, बहुत ही बढ़िया तानिया। और आप क्या धार्मिक स्थलों पर जाती हैं आप, मतलब आपको अच्छा लगता है ट्रैवल करना ऐसी जगहों पर स्पेशली?
3: जी हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा धार्मिक स्थलों पर जाना, और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी जगहों पर भी जा चुकी हूँ, जैसे बद्रीनाथ और बनारस, अयोध्या, वैष्णो देवी, कृष्णांग।
2: ये तो बहुत ही अच्छी बात है तानिया। और इन जगहों में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वहाँ पर जाकर?
3: सबसे अच्छा तो ऐसे स्थलों में वहाँ की स्थिति है, वहाँ की शांति होती है, जितना वहाँ देखा जाए कि लोग श्रद्धा भाव से वहाँ पे जाते हैं, करते हैं अपनी पूरी करने के लिए वहाँ पे इतने अच्छे जाते हैं।
2: और क्या आपको लगता है कि आज के युवाओं में धार्मिक जो पर्यटन है, जो रिलीजियस प्लेसेस में जाने का जो पर्यटन है, वो उसका आकर्षण बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है?
3: मुझे लगता है कि ऐसी जगहों पर जाना, क्योंकि हम जो आज के यूथ हैं हमें हर चीज का बहुत ही ज्यादा जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से हमें शांति मिले। तो कोई होता है जिनके दोस्त होते हैं तो वो उनके साथ अपने दुख सुख बांट सकते हैं, लेकिन कोई होता है जो बिल्कुल भगवान के आगे सरेंडर कर देते हैं कि बस मतलब आप ये हमारी हेल्प करो।
2: वेल सेड, ये तो आपने बहुत सही कहा।
3: मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता है ऐसे यूथ पे जाना, मेरे जैसे यूथ पे जाना, तो और जाना भी चाहिए क्योंकि वही एक लास्ट मतलब जब हमें हेल्प मिली तो हमें सही से ही हेल्प मिलती है, तो हमें हमेशा ब्लेस्ड होना चाहिए पॉजिटिव पावर से
2: घिरे हुए हैं। जी जी जी। अच्छा, और देखा जा रहा है कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया पर भी इन प्लेसेस का काफी प्रचार प्रसार करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया धार्मिक स्थलों की लोकप्रियता जो है उसको बढ़ाने में काफी भूमिका निभा रहा है?
3: इस पॉइंट से सही है, अगर कोई उस जगह की स्टोरीज बताता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कई लोग जैसे साउथ के लोगों को नॉर्थ की जगहों का वहाँ के मंदिरों का इतिहास नहीं पता होगा जब तक उन्हें ना बताया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम भी जब किसी जगह जाते हैं तो वहाँ सर्च करते हैं कि वहाँ क्या है, कौन सी ऐसी घूमने की जगह है। तो एजुकेशन पॉइंट तक ठीक है, अगर आप दर्शन करने की घूमने के पर्पज से जा रहे हो तो थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि हर किसी छोटे बच्चे के पास भी फोन है तो व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं
2: जी।
3: तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, और द्वारा चार धाम के कपाट खुल चुके हैं तो ये बहुत ज्यादा होता है कि दर्शन करने नहीं गए, फोन लेकर वीडियोस बनाने पे लगे होते हैं, वाली चीज गलत, ये नहीं होना चाहिए।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा आपका कोई मैसेज है जो यूथ को आप देना चाहती हैं, जो आजकल मतलब इन स्थलों की बहुत ज्यादा यात्रा कर रहा है या करना चाहता है आगे के लिए, कुछ आइटनरी आप बताओ।
3: मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि ऐसी जगह पर अपने परिवार के साथ हमें एक ही एक बार तो जाना चाहिए। बोलते हैं कि जैसे बुलावा आता है तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना
2: बिल्कुल
3: चाहिए। मतलब जब भी जाए तो अपने साथ पहले से ही हर चीज के प्रेपरेशन जरूर करें, क्योंकि पहाड़ों वाली जगह पर ठंड हमेशा ही होता है और प्लेन्स वाली जगह पर भी गर्मी इतनी ज्यादा होती है, तो हमें हर चीज की तैयारी उस हिसाब से करनी चाहिए कि मतलब कौन से मौसम में किस तरीके के कपड़े हमें चाहिए। कपड़े से भी होता है कि कोई जाता है तो वहां पे छोटे छोटे कपड़े पहनता है, मतलब हर जगह हर मतलब कपड़े उस जगह के हिसाब से पहनने
2: जी जी
3: चाहिए,
2: जी
3: उस हिसाब से पहनना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और जाते हैं तो अपने साथ दवाई वगैरह भी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि मौसम भी पहाड़ों में ठंडा है लेकिन प्लेन्स में उतना ही गर्म है, तो अगर मौसम बदलता है तो तबीयत भी बदल सकती है।
2: ये जो एडवाइस दी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो फ्रेंड है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दोस्तों मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे सभी दोस्तों का जिसने इस खास सेगमेंट में हमारे साथ पार्ट लिया और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करे कि धार्मिक पर्यटन में युवाओं का जो रुझान है वो किस प्रकार से आजकल बढ़ रहा है। इसके बाद टाइम हो चला है एक ट्रैक का, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम रतन धन पायो से और इसे गाया है पलक मुछल ने।

तो दोस्तों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारा पता है युववाणी विभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन कोड है 2480001। आप इस पर हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं और हमारी मेल आईडी है yuvvani@gmail.com। दोस्तों, आप इस पर भी अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ हम आशा करते हैं आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और अभी के लिए लेते हैं दोस्तों आपसे अलविदा। आप सुनते रहें ऑल इंडिया रेडियो, सिर्फ 100.5 MHz पर। मैं थी आपके साथ ऋतु कोटनाला।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं और अब सुनिए पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनरवाल हमार सब श्रोताओं को म्यार ज्योति जोशी की तरफ बटी नमस्कार पहला प्रणाम। और आज म्यार दगड़ में छन
1: सरिता भट्ट की तरफ बटे भी गरम गरम बेखुंदा की ठंडी ठंडी नमस्कार सेवा सोली। आशा कर दें कि आप सभी राज्य खुशी से वाला, स्वस्थ वेला, मस्त वेला और जबरदस्त वेला।
0: बिल्कुल
1: आप सभी की कुशलता की कामना हम सदनी भगवान बद्री केदार से कर दें और सदनी कर दही रोला।
0: बिल्कुल। और क्या हालचाल चन सरिता जी तुम्हारा?
1: जोशी जी, ज्योति जोशी जी, आपो को भी सेव सौली भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए मेरे तरफ बटी नमस्कार पहला
1: सेव सौली। बिल्कुल। और आज कुमाऊं और गढ़वाल बैठे हो और अपने अपने बोलियों में अपने अपने भाषा में बात करना चाहिए तो अच्छा लगना चाहिए ना।
0: यही तो हमारा ग्राम जगत जो हमारा कार्यक्रम छु वी की खास बात छ ना।
1: और रौनक भी तभी छ है ना।
0: बिल्कुल।
1: कुमाऊं की सुंदरता, गढ़वाल की सुंदरता
0: हो,
1: बोलियों में हो, चाहे दिखण में हो, पैरण में हो, रीति में हो, रिवाज में हो, संस्कृति में हो,
0: बिल्कुल में ना,
1: चाहे भाषा कोई भी हो, बोली कोई भी हो, पर भाव तो एक ही चे। हाँ, प्यार प्रेम स्नेह को।
0: बिल्कुल।
1: और दगड़ियों जन की आप जन दे छा कि आज एतवार और एतवार का दिन होंद आप अनुरोध में कार्यक्रम और ये होंद बहुत ही खास किले की आप भेज दिया हमको चिट्ठी और हमारे झटपट आंगोल चिट्ठी पता बता दे जोशी।
0: बिल्कुल श्रोताओ, हमारे कार्यक्रम शुरू एल है रो तो 7 बजे तले हमारे कार्यक्रम यो चलल, तो जो ले गीत आप सुनना चाचा या जो ले अपन विचार सुझाव आप हमते भेजना चाचा, तो आप झटपट कलम पकड़ बेर हमारे पता लिख लियो। हमारे झटपट वाल पता छू चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com।
1: और हमारो चिट्ठी वाल पता छ कार्यक्रम ग्राम जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, निकट रिस्पना पुल और पिंच 248001।
0: बिल्कुल।
1: और एक बात और, आपन जो गीत सुनन जे अपन मन पसंद का गीतांग का सुनन तो भाई गीतांग को नौ और गीत का बोल साफ साफ लिखा।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरी बात कि हम उन गीतों थे आप तो सुना सकते हैं जो हमारा जो ये स्टूडियो में गया होला जो भैर होला वो थे नहीं सुना सकते,
0: वो हम नहीं सुना सकनो आप सबको, तो ये चीज का आप खास ध्यान रखिया। और सरिता जी कार्यक्रम की शुरुआत करनो सबू है, पहली अपन कार्यक्रम में हम अपन श्रोताओं को सुनो सुंदर सा गढ़वाली गीत माधुरी भंडारी का गाया स्वर में।

0: अभी आप सुनना चाह माधुरी भंडारी का स्वर मयूर सुंदर सी गढ़वाली बजबन
1: बिल्कुल
0: लोकगीत। आशा करते हैं कि आप सभी तई पसंद है और
1: होय
0: ज्योति
1: होय
0: मिलगणु थैला गरु गरु होणु च कुछ बात छेच।
1: होय बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास चिट्ठी पुज रहे, तो यो चिट्ठी हमारे पास है रहे ग्राम जगत कार्यक्रम का सभी परिवार जनों को देवेंद्र सिंह रावत सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज बडोवाला निकट जॉली ग्रांट जिला देहरादून बटी। तो यो लिखना चन की आप सबको सप्रेम नमस्कार और आप मेरी आवाज में कृष्ण तेरी बांसुरी बोल का नजीमाबाद बटी रिकॉर्ड गीत सुने दियो। और अगर यो गीत आपका स्टूडियो में है तो वीक अलावा हीरा सिंह राणा की आवाज में गाई कोयले गीत सुने दियो।
0: पहले तो देवेंद्र सिंह राणा जी आपको भी नमस्कार सेवा सौंधी और आपन बोली कि आपा की आवाज में तो हम ओबर मजू इन्हें उन्हें सब ढूंढ नहीं मिली तो आप तो सुने दे और अपना सभी सुनदन उतर सुने दे हीरा सिंह राणा का स्वर माई सुंदर सी कुमाऊनी गीत।
2: ये मेरे मानी ले डानी हम

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन के नए कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI

0: कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओ, रह बारो थे पहली देवेंद्र सिंह रावत का अनुरोध मा हमूल सुनो, हीरा सिंह राणा का स्वर में गाई सुंदर सा कुमाऊनी गीत। और आशा करनू सरिता जी, देवेंद्र जू को और हमार श्रोताओं को यो गीत भल लागनल है ना।
3: जब भल लग दिन तभी तो गीत लिख देन, अगर तभी तो गीतांगों का जो गया गीत छे ना ऊ तो लिख देन।
2: बिल्कुल। अब अगिल क्या की चिट्ठी छे?
3: चिट्ठी आई छे हमारे दीदी की, और दीदी छे मनोरमा रावत जी विजय पार्क देहरादून बटे लिखना छिन ग्राम जगत कुटुम्ब दरी को बेखुंदा की नमस्कार सेवा सौ दिवाल, और लिखना छिन की नरेंद्र सिंह नेगी को गीत ना काटा तो डालू जो अनुरोध कर रही जो ए था सुना दिया बल। तो दीदी आप भी और हमारा सभी सुनदर अभी सुना ये सुंदर सी गीत।

पगली ना पूरी ना डोकरी ना पुंगड़ी बचाली दाढ़ी काटेली ते माटी बगली ना कूड़ी ना डोकरी ना पुंगड़ी बचाली घास लखेड़ा ना खेती हिराली भूल तेरे आस

अभी आप सुनना चाह नरेंद्र सिंह नेगी का गीत गयूं, यो सुंदर सी गड़बड़ी गीत। अरे यहाँ अनुरोध करूँ छो मनोरमा रावत को,

0: वो दीदी हमारे पुराने श्रोता छिनी और हमेशा हमको चिट्ठी भेज दिन दीदी, हम तभी भल लगद
1: बिल्कुल
0: आप अनुरोध और आपा जो गीत रनी ना वो सभी उतने पसंद आने। खैर जो सभी लिख दिन जो गीत गीतांग हो कितनी मेहनत करी चे वो तो गीत कुछ खास ही होने ना अच्छा होने ना सभी उतने पसंद आने। पर जो मनोरमा दीदी के लिखे रहने ने वो तो और भी बढ़िया होने के लिए कि मनोरमा दीदी ना ज्योति हम देख बहुत पहले बटे जुड़िया
1: ओए,
0: चेन
1: और
0: है ना।
1: हमारा हर कार्यक्रम में इनकी चिट्ठी हमारे पास जरूर पहुंची ना।
0: अज्ञा दिन कुछ काम भी हो मजे आ रहा है दीदी ये कुछ हुआ ना
1: हो
0: और चिट्ठी नहीं आली तो नखुर लगत कि आज दीदी पता नहीं कब चली गई चिट्ठी नहीं। पहले तो
1: कि
0: इन हुन नीचे
1: हो अब
0: पर
1: हमको
0: हो
1: ले आदत है कि नहीं ना ये कली जी।
0: तो जो लग के हम बोनु चाह।
1: अब हमारे पास अगली चिट्ठी आ रहे है आयुषी भट्ट नथु वाला बटी और यो लिखना छन की सरिता जी और ज्योति जी को म्यारा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत बहुत भल है रे और आप तो अनुरोध चुकी अनिल तिवारी का स्वर में
0: लियो ठंडो
1: गाई
0: पानी।
1: हो लियो ठंडो पानी गीत सुने दिया
0: उन्हें लगी हूँ जेठा मैना उन्हें लगी हूँ गोला मत
1: बिल्कुल
0: तीसर
1: होय
0: बात होने ठंडा पानी।
1: बिल्कुल
0: तो आयुष जी यार अब हमारा सभी सुन दारा सुन दे आयु सुंदर सी गीत।

0: श्रोताओ, आयुषी भट्टका अनुरोधमा अल्लै हमुल सुनो अनिल तिवारीका स्वरमय गाया यो सुन्दर सा गढवाली गीत। और आशा गर्नु सरिताजी कि आयुषीजीको यो गीत और हाम्रा श्रोताओको यो गीत भल लाग्न।
1: अर्धगडम ज्योति झोल भी होएगा गरु अर्य चिट्ठी आई च अपूर्व जोशी की अस्टार्ट जॉन सार्बटी अलिखना छिन की सरिता जी ज्योति जी कुबल नमस्कार प्रणाम अलिखना छिन की राहुल वर्मा का स्वर्मा कोई सुंदर सी गीत सुना दिया।
0: बिल्कुल

0: अभी आप सुनना चाह राहुल वर्मा का सुरमा यू सुंदर सी जौनसारी गीत अर यहाँ अनुरोध करियो छो अपूर्वा जोशी को स्टार्ट जौनसार बिटी
1: बिल्कुल
0: अर ज्योति अभी झोला में तुम जन ढूंढो भाई।
1: बिल्कुल श्रोता, हमारे पास अगली चिट्ठी पूज रहे पल्लवी पंत नथुआ वाला बटी और इनू लिख रखो कि सरिता जी और ज्योति जी को म्यार नमस्कार पहला। और यू लिखना चन कि रोज तो आप हमारे पसंद का गीत सुनो छा, तो आज आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दिया।
0: यो भी बढ़िया। तो पल्लवी जी आपको हमारे तरफ बटे नमस्कार सेवा सौंदी जन के आप बोले कि रोज आप अपने पसंद का गीत और आज हमार पसंद का गीत सुनना चाह तो दगड़ियों गढ़वाल भी हो गया और जौनसार भी हो गया तो हमार पसंद चल दिया आज कुमाऊं के छोड़ और सुन दिया दया शंकर फुलारा का स्वर मायू सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

0: श्रोताओं, अल्ले हमूल सुनो दया शंकर फुलारा का स्वर में गाई यो गीत।
1: हाँ, और आशा करते हैं कि गीत आपते पसंद आए होलू, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: भाई सभी गीतांग जो भी छू बहुत मेहनत लगन से अपड़ो काम कर दे निष्ठा से। और दगड़ियों, जन के आप जन रही छा कि ठंड मठू के वक्त होनो च उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को, तो घड़ेक में ही सुन दिया समाचार।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर, और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज में सिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 150 मीटर स्पान सीसी पुल का शिलान्यास किया। चमोली जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत कुल 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार रुपए की योजनाओं को अनुमोदित किया गया। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा धारचूला गुंजी में व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया गया, और टिहरी जिले में जिला प्रशासन की अभिनव पहल माई ब्लॉक माई लाइब्रेरी योजना के तहत छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज के शक्ति फार्म को शीतकुल क्षेत्र से जोड़ने हेतु सिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 150 मीटर स्पान सीसी पुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण से क्षेत्र के लगभग 50,000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, तथा शीतकुल सितारगंज एवं विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए लगभग 9 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पुल में सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।
4: सिटकुल का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र सिसोना विकासखंड जाने के लिए जो लोगों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इसके बन जाने से उनको बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसान उनका सफर हो जाएगा। अन्य भी बहुत सारी योजनाएँ यहाँ पर चल रही हैं। हमारा प्रयास पूरा सितारगंज क्षेत्र, शक्ति फार्म का क्षेत्र, यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, उसके लिए भी ड्रेनेज का प्लान तैयार किया जा रहा है। अन्य विकास कार्य, यहाँ पर एक्वा पार्क का निर्माण हो रहा है, गोला नदी पर पुल का निर्माण होना है, सभी काम तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सितारगंज एक उत्कृष्ट क्षेत्र बने, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
3: चमोली जिले के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक आयोजित की गई। बैठक से वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत कुल 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार रुपए की योजनाओं को अनुमोदित किया गया। बैठक के दौरान विभागवार प्रस्तावित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए, तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर समन्वय से अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अधूरे एवं गतिमान कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। श्री चौधरी ने जिला प्रशासन द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी वर्ष की योजना जिले के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
5: लगभग 74 करोड़ रुपए की जिला योजना चमोली जनपद के लिए आज यहाँ पे पारित हुई है। सभी विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से रखे थे, उन पर विचार किया गया और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको धन आवंटित किया गया है, और निर्देशित किया गया है कि जो जिन विभागों के पास अपनी कार्यदायी संस्थाएं नहीं हैं, वो जिला पंचायत के माध्यम से जो है कार्यदायी संस्था के रूप में उनको नामित करें।
3: उत्तरकाशी जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पूर्ति विभाग स्थिति को सुधारने में जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा मार्गों पर विभाग की तरफ से मार्च और अप्रैल में छापेमारी कर स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि पहले घरेलू गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग न होने से आम जनता काफी परेशान नजर आ रही थी। वर्तमान समय में जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होगी उसको आसानी से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहा है।
6: गैस की स्थिति थोड़ा सुधर गई है, जितना बैकलॉग था वो बिल्कुल कम हो गया है। जितने लोग भी, अगर आपके पास डीएससी नंबर है और आपको अगर 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो अभी थोड़ा समस्या कम हो गई है, उनको मिल पा रहा है, आसानी से मिल पा रहा है। लाइन लग रही है क्योंकि डिलीवरी पॉइंट्स उत्तरकाशी में डिलीवरी पॉइंट्स है, अभी होम डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है और क्योंकि पर्वतीय जनपद इससे बाहर है होम डिलीवरी से, तो इस वजह से अभी जितनी सप्लाई आ रही है बराबर है, पर्याप्त है। इंडियन गैस एजेंसी की लगभग 2 गाड़ियाँ प्रतिदिन आ रही हैं, सफिशियंट है, जिनको हम पहले ग्रामीण क्षेत्रों में भेज रहे हैं और उसके बाद जैसे ही वो कवर होते हैं तो उनका एक रोस्टर निकल जाएगा जिसमें रूट चार्ट निकल जाएगा।
7: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
3: आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग पिथौरागढ़ द्वारा धारचूला गुंजी यात्रा मार्ग पर व्यापक परिवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 80 से अधिक वाहनों की जांच की गई, जिनमें 12 प्राइवेट वाहनों की भी जांच शामिल रही। जांच के दौरान विभिन्न नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर 32 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई, जबकि 6 वाहनों के आरसी एवं परमिट जब्त किए गए। चेकिंग के दौरान 3 ऐसे वाहन पाए गए जिनके फिटनेस प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख समाप्त हो चुके थे। बावजूद इसके वे आरटीओ परिवर्तन सिवान कांडपाल ने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान बिना वैध अभिलेखों के किसी भी वाहन को यात्रियों के साथ संचालित नहीं होने दिया जाएगा और ऐसे वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया जाएगा। टिहरी जिले में जिला प्रशासन की अभिनव पहल माई ब्लॉक माई लाइब्रेरी युवाओं के उम्मीद की नई किरण बनकर उभर रही है। चंबा ब्लॉक सभागार में संचालित लाइब्रेरी में छात्र छात्राएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी के खुलने से स्थानीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महानगरों का रुख नहीं करना पड़ रहा है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी कम हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने बताया कि माई ब्लॉक माई लाइब्रेरी योजना के तहत सभी विकास खंड मुख्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी संचालित की जा रही है।
8: माई ब्लॉक माई लाइब्रेरी, उसका उद्देश्य है कि आजकल जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उतने में बच्चों को पढ़ने के लिए एक ऐसा प्रमुख स्थान मिले, जिसमें कभी कभार ऐसा होता है कि घर में अलग अलग चीज़ें चलती हैं तो उनको घर में पढ़ाई का वो माहौल नहीं मिल पाता है, तो ब्लॉक में उनके लिए एक स्पेस क्रिएट किया गया है जहाँ पे वो लोग आ सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट सुविधा है, उनके लिए डेजिग्नेटेड डेस्क और चेयर है, वो लोग सुबह किसी भी वक्त आ सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने निरीक्षण किया तो बच्चे सुबह 7 बजे से आए हुए थे और वो पूरे दिन भर बैठते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे वाईफाई भी उनके लिए, उसके अलावा बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की किताबें भी फ्री में इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है।
3: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्रा राधिका ने बताया कि जिला प्रशासन की इस पहल से छात्र छात्राएं ब्लॉक मुख्यालय में रहकर ही तैयारी कर रही हैं।
9: मेरा नाम राधिका है और मैं चंबा से ही बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे ब्लॉक में 1 महीने पहले लाइब्रेरी खुली थी, जिससे हम स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है जो तैयारी कर रहे हैं। हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ता था देहरादून या फिर अदर सिटी में तैयारी करने के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है वीडियो सर के द्वारा, जिसको मैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मानती हूँ।
3: पिथौरागढ़ स्थित हरे सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। 1 से 16 मई तक आयोजित प्रतियोगिता में समीर ने प्री क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपे, क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड और सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के बॉक्सर को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी और रजत पदक हासिल किया। ये स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज में सिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 150 मीटर स्पान सीसी पुल का शिलान्यास किया। चमोली जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत कुल 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार रुपए की योजनाओं को अनुमोदित किया गया। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा धारचूला गुंजी में व्यापक परिवर्तन अभियान चलाया गया और टिहरी जिले में जिला प्रशासन की अभिनव पहल माई ब्लॉक माई लाइब्रेरी योजना के तहत छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दगड़ियों स्वागत छ आपको अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत की दूसरी पाली में। और मिछो आपक दगड़िया सरिता भट्ट और दगड़ा मन छिने
1: मिछू ज्योति जोशी।
0: तो ज्योति जी, फिर जो आप जने सरकार मिले।
1: बिल्कुल। और हमारे पास ये चिट्ठी आ रहा है सौम्या ढोंडियाल,
0: सौम्या धूलिया
1: धूलिया,
0: अच्छा
1: माफ करिया, सौम्या धूलिया डांडा मंडी पौड़ी गढ़वाल बटी। और इन्हों लिख रहा को ग्राम जगत कुटुम्बरी ते।

0: म्यार सादर नमस्कार। हम ग्राम जगत कार्यक्रम रोज सुनो और आज ज्योति जी और सरिता जी की गढ़वाली और कुमाऊनी बोली भाषा में तालमेल गपशप सुनी खूब आनंद हुआ छू। तो इनर ये इनर अनुरोध छू कि आज जरा राकेश शाह जी का स्वरमा एक सुंदर सा गढ़वाली गीत
1: सुने दिया।
0: बिल्कुल आपकी आपका जो अनुरोध छू हम जरूर पूरी करूँ और इनको सुनो हम ये सुंदर सा राकेश शाह जी का स्वरमा गाई गढ़वाली गीत।

0: श्रोता सौम्या धुलियाका अनुरोधमा अल्ले हमुल सुन राकेश साहजीका स्वरमा गाई यो सुन्दर सा गढवाली गीत
1: और अब एक चिट्ठियाई च प्रांचली जोशी की चुखू मोहला देहरादून बटे लिखना छिन अनीसा गुसाई की आवाज में बल हे चखुली उड़ी जा गीत सुना दिया। और दगड़ियों समय की पाबंदी जन की आप जान दिया चार जो जो चिट्ठी बच जाली वो अगले हफ्ता उनका गीत उनकी चिट्ठी अगले हफ्ता पढ़े जाल एतवारा दिन।
0: बिल्कुल
1: तो सुन दिया ये सुंदर सी गीत अनीसा गुसाई का स्वरमा।

0: श्रोता प्राञ्जली जोशीका अनुरोधमा अनिसा गोसाईका शर्मा गाई यो गीत हमुल सुन और आशा गर्नु सरिताजी यो गीत सबको भल लाग्नला हो। और अब श्रोता कार्यक्रम में बखत है गो गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का, तो आवाज सुन लो गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब सुनिए गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
2: सिमन्या आकाशवाणी देहरादून बेटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ा।

0: डिप्टी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज का शक्ति फार्म सिडकुल क्षेत्र से जोन के खातिर सिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाला 150 मीटर स्पान सीसी पुल को शिलान्यास करी। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि ये महत्वपूर्ण पुल का निर्माण से क्षेत्र का लगभग 50,000 लोगों ते सीधू लाभ मिललो और सिडकुल सितारगंज और विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुँचन कुणी लगभग 9 किलोमीटर की दूरी कम हो जाली। उन बोली कि यू पुल क्षेत्र में सुगम आवागमन सुनिश्चित करण का साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास ते भी नई गति प्रदान कर लो। श्री धामिन बोली कि शक्ति फार्म में पीपीपी मोड मॉडल की माध्यम से मिल्क पाउडर आइसक्रीम एवं चीज निर्माण से संबंधित आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करे जानी छ। एक साथ ही प्रहलाद पलसिया में लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क को निर्माण कार्य तेजी से चलनु छ, जैको लगभग 75% कार्य पूरा हो चुकी। चमोली जिला का प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक आयोजित करी गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना का अंतर्गत कुल 74,23,70,000 रुपए की योजनाओं तय अनुमोदित करी गई। बैठक का दौरान विभागवार प्रस्तावित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करी गई। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं तय क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का साथ लागू करे जो और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर समन्वय से अधिकतम लाभ आम जन तक पहुँचाए जो। उन्होंने अधूरा एवं गतिमान कार्यों तय प्राथमिकता से पूरा करण का निर्देश भी दिए। श्री चौधरी ने जिला प्रशासन द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों का प्रस्तावों तय जिला योजना में शामिल करे जान पर प्रसन्नता व्यक्त कर दू बोली कि अगला वर्ष की योजना में जिला का सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाली।
1: लगभग 74 करोड़ रुपए की जिला योजना चमोली जनपद के लिए आज यहाँ पे पारित हुई है। सभी विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से रखे थे, उन पर विचार किया गया और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको धन आवंटित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि जो जिन विभागों के पास अपनी कार्यदायी संस्थाएं नहीं हैं वो जिला पंचायत के माध्यम से जो है कार्यदायी संस्था के रूप में उनको नामित करें।
0: भारत सरकार का गृह मंत्रालय का अधीन बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली द्वारा खेल कोटा का अंतर्गत आरक्षी सामान्य ड्यूटी का कुल 404 पदों पर भर्ती कुणी आधिकारिक विज्ञापन जारी करी गई। कमांडेंट कार्यालय 25वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ द्वारा ये संबंध में जिला खेल अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी और जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी तय चिट्ठी भेजिक जनपद का सभी खेल प्रशिक्षण संस्थानों, स्टेडियमों, खेल अकादमियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में एक व्यापक एवं प्रभावी प्रचार प्रसार करण को अनुरोध करी गई ताकि सीमांत क्षेत्र का अधिक से अधिक योग्य खिलाड़ी ये अवसर को लाभ उठे सकुन। भर्ती की पूरी प्रक्रिया द्वि चरणों में आयोजित करे जाली।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना का तहत राशन कार्ड सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य से यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम URCMS पोर्टल लागू कर दिए गए। नई व्यवस्था का तहत अब नागरिक घर बैठे नयू राशन कार्ड बनाने, नौ जोड़न, हटाने और आवश्यक संशोधन ऑनलाइन कर सकला। सरकारन पुराना RCMS पोर्टल ते आधुनिक तकनीक और सरल प्रक्रियाओं का साथ अपग्रेड करिक URCMS पोर्टल तैयार करी छ। ये सी राशन कार्ड संबंधी सेवा तेज, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक।

0: खोली। देहरादून का जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवालन बोली की नई व्यवस्था से राशन कार्ड सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ली और लोगों को समय का बचत होली।
1: शासन ने जो है जो राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है उसको अपडेट किया है, आरसीएमएस को यूआरसीएमएस किया है, उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फ़ोटो, इंडिविजुअल फ़ोटो भी लगने लगी है, लगानी मैंडेटरी हो गई है, और सभी के मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा और जो है उससे ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। इस तरह से जो है राशन कार्ड के लिए जो है कोई भी जो है जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनके यथावत चलते रहेंगे। उनके लिए ई केवाईसी का है वो दूसरा प्रोविजन है, वो सब लोग कर ही रहे हैं, मैक्सिमम हमारा हाँ वो भी चुका है, और जिनके बने हुए उनको कुछ नहीं करना है।
0: पंच केदारमन एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली आज विधि विधान व पूजा अर्चना का बाद शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर कुणी रवाना हुई। डोली आज रात्रि विश्राम को पनार बुग्याल पहुंचली। भोर 18 मई को सुबेर रुद्रनाथ धाम पहुंचली। जयका बाद 12 बजे 45 मिनट पर भगवान रुद्रनाथ का कपाट आम श्रद्धालुओं की खातिर खोल दिए जाला। ये अवसर पर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी सहित देश विदेश से बड़ी संख्या में आया श्रद्धालु मौजूद रहन। रुद्रनाथ का पुजारी हरीश भट्टन बताई कि 18 मई को दोपहर में रुद्रनाथ मंदिर का कपाट आम श्रद्धालुओं की खातिर खोल दिए जाला।
2: ज्येष्ठ संक्रांति के दिन भगवान रुद्रनाथ जी की विग्रह मूर्ति वो अपने गर्भगृह से बाहर आकर यहाँ प्रांगण में रखी गई थी। 15 और 16 तारीख को यहाँ पे सबके लिए दर्शनार्थ रख के आज 17 तारीख को हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, और 18 तारीख मई 11:30 और 12 बजे के बीच में सभी श्रद्धालुओं के लिए चतुर्थ केदार जहाँ भगवान शिव के मुख्य दर्शन है सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे।
0: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने बोली की आस्था को जो सैलाब उमड़ी वैसी सनातन धर्म ते मजबूती प्रदान हुली।
3: भगवान रुद्रनाथ जी की डोली यहाँ पर प्रस्थान हुआ है। इस बहुत ही पावन अवसर पर मुझे माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा हूँ कि आस्था और श्रद्धा का जो समुद्र है वो चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो ध्वजवाहक के रूप में हमारी सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे
0: हैं। मुख्य समाचार एकदा फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सितारगंज मासिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाला 150 मीटर स्पान सीसी पुल को शिलान्यास करी। चमोली जिला में जिला योजना की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना का अंतर्गत कुल 74,23,70,000 रुपये की योजनाओं को अनुमोदित करी गई। भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना का तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू कर दिए गई। और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली रुद्रनाथ मंदिर कुणी रवाना हुई। भोर 12 बजे 45 मिनट पर कपाट आम श्रद्धालुओं की खातिर खोल दिए जालो। एक साथ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को अंक समाप्त होंदू। सिमन्या
4: कार्यक्रम बटोलने हम ते दिया अनुमति।
5: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका भैया विकास चमोली। तो कैसे हैं साथियों आप, और कैसे चल रही है इन दिनों खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां? बिल्कुल भाई, अब आने वाले समय में हमने तमाम फसलें हैं जिनकी बिजाई करनी है, तो तैयारियां तो अभी से करनी होंगी। और तैयारियों में खास तौर पर हम बात करें, जैसे गर्मियों की हम गहरी जुताई की बात करते हैं। दूसरा साथियों, इन दिनों क्योंकि खेत खाली हैं तो मृदा परीक्षण की बात कही जाती है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि मृदा परीक्षण हमारी खेतों के लिए कितना ज़रूरी है। जब मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा तभी तो अच्छा उत्पादन हमें मिलने वाला है। बिल्कुल। तो अगर आपने भी काफ़ी टाइम से मृदा परीक्षण नहीं कराया है, 3 से 5 साल में साथियों हमें ये मृदा परीक्षण करा देना चाहिए। अगर आपने नहीं कराया तो इसको तुरंत करवाइए। खेतें खाली हैं, आप नमूना ले सकते हैं। अपनी खेतों को आप 3-4 भागों में बांटिए और वहाँ से अलग अलग जगहों से आपने नमूना लेना है। 6 से 9 इंच तक का साथियों आप वी आकार का गड्ढा बना सकते हैं, और उससे आप मिट्टी निकाल कर मिट्टी से कंकड़ पत्थर या कोई भी उसमें प्लास्टिक का टुकड़ा है उसको आप अलग कर लीजिए। 7-8 जगह से आप नमूना एक जगह इकट्ठा करिए और उस नमूने से आप लगभग 500 ग्राम मिट्टी साथियों नमूने के लिए एकत्र करिए। उस मिट्टी को साथियों आप लैब में भेज के उसका परीक्षण करवा सकते हैं, और उस आधार पर अब देखिए आपको क्या फायदा होने वाला है। जब आपको पता चलेगा कि आपकी मृदा में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, मृदा में जैसे कि नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, ये कई सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारी मृदा में पाए जाते हैं, उन सब का विवरण आपके पास आ जाता है कि किन किन पोषक तत्वों की मृदा में कमी है। उस हिसाब से अगर आप खाद उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो इससे जो आपकी लागत है उसमें कमी आएगी, इससे जो आपका उत्पादन है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपने वो सारे पोषक तत्व मृदा को दे दिए हैं जिनकी मिट्टी को ज़रूरत है। तो इस तरह से साथियों उत्पादन बढ़ाने में मृदा परीक्षण काफ़ी हद तक कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए साथियों, बातों का सिलसिला यूं ही आपके साथ जारी रहेगा, लेकिन अभी हम करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये गीत।
1: हरी भरी तरकारी लीलो आलू मटर।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन के नए कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: गीत के बाद साथियों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और साथियों जैसे कि गन्ने की फसलें हमारी खेतों में हैं और आमतौर पर अगर हम देखें जो गन्ने की फसल में मुख्य रूप से समस्या है, कभी कभी जब हमारी फसल में लाल सड़न रोग आ जाता है तो काफ़ी हद तक ये हमारी फसलों को बहुत नुकसान करता है। अब देखिए साथियों, इस लाल सड़न रोग से कैसे हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं, बुआई के समय किन सावधानियों का हमें पालन करना चाहिए ताकि हमारी फसलों में ये लाल सड़न रोग ना आए, इस महत्वपूर्ण विषय पर साथियों बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जगमोहन पोखरियाल जी। तो आइए करते हैं पोखरियाल साहब से बातचीत। पोखरियाल जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
3: धन्यवाद और सभी किसानों को मेरा नमस्कार।
2: पोखरियाल साहब, जब गन्ने की बात आती है तो अक्सर किसानों के मन में ये भी चलता है कि कहीं हमारी जो फसल है उसमें लाल सड़न रोग ना आ जाए, क्योंकि जहां तक हमने सुना है हमारी पूरी फसलों को बर्बाद कर देता है। तो थोड़ा बताएं कि ये लाल सड़न रोग क्या है।
3: किसान भाइयों, आज मैं आपको गन्ने की फसल में लगने वाला रोग रेड रोट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे हिंदी में गन्ने का लाल सड़न रोग कहते हैं। जैसे कि किसान भाइयों आपको मालूम है कि गन्ने की फसल में विभिन्न प्रकार के कीट लगते हैं और बीमारियां लगती है। कीटों में तो क्या है कि जो हमारे जो कीट लगते हैं उसमें टॉप शूट बोरर है
2: जी।
3: आपका इंटरनोड बोरर है, अर्ली शूट बोरर है, गुरदासपुर बोरर है, दीमक है और सफेद मक्खी है इत्यादि लगती, जिससे कि हमारे गन्ने खेत को बहुत नुकसान पहुंचता है। और इसके साथ साथ ही जो गन्ने की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग भी लगते हैं और इसमें जो है गन्ने का लाल सड़न रोग बहुत ही प्रमुख है और इससे बहुत ज्यादा हानि होती है। और इससे क्या है कि कृषक उत्पादक के साथ साथ हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है इसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है
2: जी।
3: और इसलिए क्या बोलते हैं, इसे गन्ने का कैंसर की भी संज्ञा दी गई है।
2: बिल्कुल, निश्चित तौर पर गन्ने का ये कैंसर है क्योंकि पूरी फसल को ये बर्बाद कर देता है। अच्छा पोखरियाल साहब, अगर हम गन्ने की बात करें तो कैश क्रॉप के रूप में हमारे किसान साथी इसे उगाते हैं और पूरे भारतवर्ष में गन्ने की खेती की जाती है। तो फैलने की बात अगर हम करें तो कहां कहां इसको देखा गया है।
3: किसान भाइयों, जैसे कि मैंने बताया यह रोग गन्ने की फसल के लिए काफी हानिकारक रोग होता है और यह एक फफूंद का रोग है और यह रोग क्लोटोट्राइकम फाल्केटम पैथोजन के द्वारा फैलता है। और भारत में यह रोग उन सभी जगहों में पाया जाता है जहां जहां गन्ने की खेती की जाती है। और सबसे पहले यह रोग इंडोनेशिया के जावा शहर में वेंट के द्वारा 1893 में रिपोर्ट किया गया।
2: अच्छा।
3: तथा इस रोग को रेड स्मट का नाम दिया गया। उसके बाद भारत में 1960 में बटलर के द्वारा इसे रिपोर्ट किया गया और इसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन का नाम दिया गया।
2: पोखरियाल साहब, इस रोग की बात करें तो हमारी फसलों में ये रोग कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है ये रोग?
3: क्योंकि ये रोग जब होता है जब वातावरण में अधिक आर्द्रता हो, ये रोग को बढ़ाने में अधिक आर्द्रता रोग को बढ़ाने में सहायक होती है। जब खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था ना हो और क्या बार बार गन्ने की एक ही किस्म को बोया जा रहा हो और गन्ने के बीजों का उचित कवकनाशियों से उपचारित ना किया गया हो तो ये जो रोग है बहुत आसानी से फैल सकता है।
2: अच्छा।
3: और ये क्या है कि जब फसल की कमजोर वृद्धि हो तब भी ये रोग को फैलने में सहायक होता है। और किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण हवा के द्वारा
2: जी।
3: और बारिश के पानी के द्वारा, सिंचाई के पानी के द्वारा, यहाँ तक कि भारी ओस के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल सकता है
2: जी। अच्छा, किस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं फिर पौधे में जब ये रोग आ गया?
3: किसान भाइयों, कि गन्ने का जो लाल सड़न रोग है ये जुलाई से अगस्त के माह में मानसून के साथ ही प्रकट हो जाता है।
2: अच्छा।
3: और ये गन्ने की कटाई तक विकसित होता रहता है। और ये अगर आपको इसके रोग के लक्षण में आप जाएंगे जो प्रारंभिक अवस्था में, इसे पहचानना थोड़ा कठिन होता है। इस रोग को पहचानने के लिए शुरुआती अवस्था में आप गन्ने के ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती को बड़े ध्यान से देखें कि वो थोड़ा सा आपको मुरझाई हुई मिलेगी और उसमें रंग की हानि होगी तथा उसमें लाल रंग के धब्बे पाए जाएंगे पत्तियों के ऊपर। तो ये क्या है, रेड रोट के प्रथम लक्षण है
4: जी।
3: और लाल रंग के जो धब्बे होते हैं किसान भाई, उसके कई कारण हो सकते हैं, पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। मगर हम पत्तियों के पीछे साइड देखें तो आपको रुद्राक्ष जैसी मालाएं दिखाई देगी, जो धब्बे से दिखाई देंगे तो वो संरचना दिखाई देगी। तो इससे मतलब प्रतीत होता है कि ये रेड रोट है। दूसरा क्या है, अगर ऐसा रोगग्रस्त पौधा है आपके खेत में जिसमें रेड रोट लगा हुआ हो, उसको किसान भाइयों लीजिए और उस गन्ने को आप लंबाई में चीरें। लंबाई में चीरने में आप देखेंगे उसके अंदर लाल रंग के धब्बे और उनके बीच बीच में सफेद रंग के धब्बे दिखाई देंगे। उसमें जो है सिरके जैसी गंध आएगी। जब सिरके जैसी गंध आएगी तो ये इस रोग के विशिष्ट पहचान है
4: जी।
3: वो बाद में क्या होगा, आप देखेंगे गन्ना सूख जाता है और उसका गन्ने का वजन भी कम हो जाता है। और ऐसे गन्ने जो है जिनमें ये रोग लगा हुआ हो, वो उनको आप देखेंगे गांठ से अगर तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएंगे
4: जी। इतना खतरनाक बुखरियाल साहब ये रोग है, और इसके नियंत्रण की बात करें, अगर ये हमारी खेत में आ जाए, बिजाई का भी ये समय चल रहा है गन्ने की, तो नियंत्रण के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? शुरू से ही अगर हम बिजाई से ही इन सब चीज़ों को ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं इस रोग से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं।
3: किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा मैं केंद्रीय एकीकृत नासिक जीव प्रबंधन केंद्र से हूँ, और हम किसानों को यही सलाह देते हैं कि सबसे पहले आप सस्य क्रियाएं अपनाएं, फिर यांत्रिक क्रिया अपनाएं, फिर जैविक अपनाएं, और आखिरी में आप रासायनिक अपनाएं। तो इसे मैं आपको थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं कि गर्मियों में गहरी जुताई करना। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो मृदा है उसके अंदर कि बहुत सारे कीटों के जो है अंडे हैं, आपके प्यूपा है, लार्वा है, जो लार्वा सुंडी जो हिंदी में कहते हैं, और रोगों के रोगाणु भूमि के अंदर मौजूद रहते हैं
4: जी।
3: अगर हम गहरी जुताई करेंगे 1 से 1.5 फीट करेंगे तो उसमें क्या है, नीचे की मट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर की नीचे चली जाएगी। तो इसका मतलब खेत खुला हो जाएगा
4: जी।
3: और खुला होने से क्या होगा कि हमारी जो सूरज की तपती हुई धूप उस खेत में पड़ेगी, और धूप के कारण कीटों के जो अवस्था है, विभिन्न प्रकार की अवस्था, अंडा है, प्यूपा है, और जो इसके सुंडियां हैं और रोग के स्पोर्स हैं, रोगाणु, वो सब नष्ट होंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, गहरी जुताई करनी चाहिए बुआई से पहले। इसके बाद है मृदा शोधन। मृदा शोधन में क्या है, आप ट्राइकोडर्मा है या फिर सुडोमोनास कल्चर है, इससे भी आप भूमि का उपचार कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, आपने 10 kg से ट्राइकोडर्मा ले लिया और 100 से 200 kg कंपोस्ट खाद ले ली, 20 से 25 नमी के साथ भूमि शोधन करिए, आपको मतलब इससे राहत मिलेगी इस रोग से। और प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करना,
4: बिल्कुल ये बहुत जरूरी है।
3: हाँ, आप किसान भाइयों ऐसी गन्ने की फसल के किस्मों का चुनाव करें जिसमें यह रोग बहुत कम लगता हो और जिसमें इस रोग से लड़ने की क्षमता हो, उसी किस्म को अपने क्षेत्र में उगाएं
4: जी। जैसे किसान कई बार क्या करता है, बार बार एक ही किस्म या अपने ही खेत से बार बार गन्ना काट लिया तो उससे ये ज्यादा फैलने के चांस रहते हैं।
3: लगातार एक ही किस्म की जो किस्मों प्रजाति उनको ना हुआ है, अलग अलग जो है उपयुक्त तो जो है आपके लिए जो दी गई है वैज्ञानिकों द्वारा जो बताई गई, उसी किस्मों को आप उगाए
4: जी। अच्छा पोखरियाल साहब, जैसे बीज शोधन की भी बात कही जाती है, ये कितना जरूरी हो जाता है इस समय?
3: बीज शोधन बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है, अगर आप रसायन में जाओगे कार्बन जीम के, एट द रेट होगा 0.1% से बीजों का संशोधन कर सकते हैं। और क्या है कि स्वस्थ खेतों से ही आपको क्या बोलते हैं बीज लेना है इसका। और ऐसे गन्ने का उपयोग ना करें जिसके कटे हुए सिरों में लाल रंग दिखाई दे। और अगर आपके खेत में बहुत ज्यादा ये मतलब रोग फैल रहा है तो 0238 किस्म की बुआई ना करें। और क्रॉप रोटेशन जो फसल चक्र हम बोलते हैं, उचित फसल चक्र को अपनाएं। फसल चक्र मतलब फसलों को हेर फेर के बोना। और ये जिस खेत में ये गन्ने की यह बीमारी लगी हो, रेड रोट लगा हो, या हिंदी में सर लाल सरण रोग कहते हैं, अगर वो लगा हो तो उस खेत में 3 वर्षों तक गन्ने की बुआई ना करें।
4: अच्छा।
3: हाँ, और खेतों में क्या उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने अक्सर देखा है किसान भाइयों कि निचले खेतों में क्या जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती कई बार,
4: और
3: वर्षा ऋतु का क्या है, पानी क्या है लंबे समय तक खेतों में ही रुका रहता है। इसलिए यह भी ध्यान रखें कि वर्षा का जो पानी है संक्रमित खेतों से हमारे स्वस्थ खेतों में ना पहुंचे, इस चीज का भी ध्यान रखना आपको। और क्या है, सबसे जो जरूरी हमारा जो पॉइंट है वह निगरानी
4: जी।
3: अप्रैल से लेकर जून तक अपने खेतों की निगरानी जरूर करें। और जब आपको मतलब ये पहचान हो जाए कि हमारे खेत में कि मतलब ये पौधे रोग ग्रस्त हैं, तो उनको क्या करना, आपने जड़ सहित उखाड़ लो और उसको क्या बोलते हैं नष्ट कर दो, और जो उसके जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में 10 से 20 ग्राम जो है ब्लीचिंग पाउडर डाल के ढक दें।
4: अच्छा।
3: हाँ, और रोग ग्रस्त जो है फसल की पेड़ी ना रखे, और लहसुन और सरसों की सह फसली खेती भी इस रोग की रोकथाम में लाभदायक होती है
4: जी।
3: और गन्ने की कटाई के बाद गन्ने के जो अवशेष को हटाए और उनको नष्ट करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नष्ट नहीं करेंगे तो फिर फैलने के चांस रहते हैं। और किसान भाइयों, इसके लिए और भी बहुत सी विधियां हैं, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। गन्ने की बुआई से पूर्व कटे हुए गन्ने जो होते हैं उन्हें 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए शोधन करें, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। इस रोग को नियंत्रित करने की और भी विधियां हैं, मगर हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है कि आप आईपीएम की जो विधियां हैं, जो हमने 4 विधियां जो मैंने बताई, सस्य विधियां, फिर यांत्रिक विधियां, और फिर जैविक विधियां, और आखिरी में आप रासायनिक विधियां। मगर किसान भाइयों से क्या गलती हो जाती है कि वो शुरू में ही रसायन का प्रयोग कर देते हैं। तो हमारी जो ये 3 विधियां है, जो सस्य विधियां है, यांत्रिक विधियां है और जैविक विधियां, ये सब उसका जो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता
4: जी। अच्छा पोखरियाल साहब, जैसे कई बार हम सारे क्रियाएं करते हैं और उसके बाद भी जब हमारी फसलों में ये रोग आ जाए, उस अवस्था में फिर किसान क्या करे?
3: उस अवस्था में जो है बुआई के पूर्व कटे हुए गन्ने के टुकड़ों को 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड, 50 WPV या थायोफिनेट मिथेल 70 WP फफूंदी नाशक के साथ रसायन शोधन करें। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये इसके रसायन में तो और भी जैसे बीजोपचार आप कार्बन डाइऑक्साइड से कर सकते हैं।
4: खड़े पौधों में भी क्या हम छिड़काव कर सकते हैं?
3: अगर आपके गन्ने के खेत में या खड़े पौधों में यह रोग आ गया तो आप कार्बन डाइऑक्साइड 50 WP का पत्तों में छिड़काव कर सकते हैं।
4: अच्छा।
3: और दूसरा क्या है, अन्य प्रदेशों से बीज गन्ना लाने से पूर्व जो वैज्ञानिक है या शोध संस्थान से अनुशंसा प्राप्त करनी चाहिए
4: जी। जगमोहन पोखरियाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आज आपके साथ हुई कि किस तरह से गन्ने की फसल को लाल सड़न रोग से हम बचा सकते हैं। अगर वैज्ञानिक विधि से हम इसकी खेती करें तो निश्चित तौर पर हमारे किसान साथियों को अच्छा फायदा होने वाला है। पोखरियाल साहब, आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद। धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे जगमोहन पोखरियाल से ये महत्वपूर्ण बातचीत, जिसमें पोखरियाल जी ने काफी विस्तार से बताया कि लाल सड़न

0: रोग से कैसे हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं, किस तरह की सावधानियों का पालन हमारे किसानों को आमतौर पर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं बातचीत का लाभ हमारे किसान साथियों को जरूर मिलेगा। और अब समय है आपके मनोरंजन का, ये सुनते हैं ये रागिणी।
1: और न्यू मन में ला नहीं मेरा एक कारण।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: एक बार फिर से स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और खरीफ की तैयारियां साथियों जोरों पर हैं, और इस समय साथियों अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर अक्सर जो हमारे किसान साथी हैं मोटे अनाज को बहुत आयत में उगाते हैं, और आप जानते हैं कि ये मोटे अनाज कितने उपयोगी हैं। साथियों एक समय वो था जब धीरे धीरे हमारी थाली से ये मोटे अनाज गायब होने लगे थे। हम भूल गए थे साथियों कि ये कितने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, लेकिन धीरे धीरे अब जब हम जान रहे हैं, डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये मोटे अनाज बहुत लाभदायक हैं, तो अब दोबारा से हमारे किसान साथी इनको उगा रहे हैं। बल्कि हर थाली में आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मोटे अनाज अपनी दोबारा से जगह बना रहे हैं। अब देखिए साथियों, मोटे अनाज को लगाने में किस तरह से हमारे किसानों को फायदा मिलता है। एक तो साथियों बाजार में इनके अच्छे दाम हमें मिलते हैं, दूसरा साथियों ये पूरी तरह से जैविक हम इनको उगा सकते हैं, तो जो जैविक उत्पादन है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। तीसरा साथियों विपरीत परिस्थितियों में साथियों ये मोटे अनाज आसानी से हो जाते हैं, अगर हमारी खेत में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई भी ना हो पाए या हम रोग कीटों की बात करें, इस तरह की समस्याएं आमतौर पर इन मोटे अनाजों में कम देखी जाती है। तो चाहे मंडुआ हो, झंगोरा हो, कौणी हो, बाजरा हो, ज्वार हो, ये सारे मोटे अनाज साथियों इन दिनों हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। बस आपने ध्यान ये रखना है कि खेत आप अच्छे से तैयार करिए, अच्छी गुणवत्ता का साथियों आपने बीज लेना है, चाहे तो आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ले सकते हैं और जलवायु के अनुसार बीजों का चयन करें। आपके क्षेत्र की जलवायु कैसी है, भूमि सिंचित है, असिंचित है, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप इन फसलों के बीजों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छा उत्पादन आपको मिलने वाला है। और आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे मोटे अनाज को हर कोई ढूंढ रहा है, हर कोई खरीदना चाहता है, हर कोई खाना चाहता है, तो निश्चित तौर पे हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा ये आमदनी का स्रोत हो सकता है। खेती किसानी के साथ चाहे आप थोड़ी मात्रा में इनको लगाएं, लेकिन दोबारा से साथियों आप इनको ज़रूर लगाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगह ऐसी हैं साथियों जो हमारी बंजर पड़ी हैं, तो उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे भी आसानी से ये उग सकते हैं। और अब धीरे धीरे साथियों हमारा भी समय हो गया है कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का। जाते जाते हम अपने सभी किसान साथियों से कहेंगे कि आप हमें पत्र निरंतर लिखें, आपके पत्रों का साथियों हमें इंतजार रहता है, और आप पत्र सीधे हमें भेज सकते हैं jagatkrishi@gmail.com पर। तो हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार, और इसी के साथ भैया विकास को दें अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उपदगड़ मी योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सितारगंज सिसोना नदी पर लगभग 11,41,00,000 रुपए लागत बढ़ने वाले 150 मीटर इस्पान शीशी पुल शिलान्यास करो। चमोली जिले में जिल योजना बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 वार्षिक जिल योजना के अंतर्गत कुल 74,23,70,000 रुपए की योजनाओं के स्वीकृत करी गो। भारत सरकार स्मार्ट PDS योजना के तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू है गो और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथक चल विग्रह उत्सव

0: कुल रवाना भो 12:45 पर मंदिरा कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाल। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सितारगंजक शक्ति फार्म के शिटकुल बट्टी जोड़नक लिजी शिशोना नदी पर लगभग 11,41,00,000 रुपए लागतल बढ़ने वाल 150 मीटर इस्पान शिशी पुलक शिलान्यास करो। यो मौक पर मुख्यमंत्री को की महत्वपूर्ण पुलक बढ़नल क्षेत्रक लगभग 50,000 मैसू के सिद्ध फैद मिलल और शिटकुल सितारगंज और विकासखंड कार्यालय शिशोना तक पुजनक लिजी लगभग 9 किलोमीटर दूरी कम है जल। उन्होंने कहा कि यो पुल क्षेत्रम सुगम आगमन सुनिश्चित करनक दगड़ दगड़ आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नई गति दल। श्री धामिल कहा कि शक्ति फार्म पीपीपी मॉडलक माध्यम बटी मिल्क पाउडर आइसक्रीम और चीज बनाने हेबे जुड़ी आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई बनाई जा रही। यह एक दगड़ प्रहलाद पलशिया में लगभग 54 करोड़ रुपए लागतल एक्वा पार्क बनाना काम ले तेजील हो रो जैक लगभग 75% काम पूरे हैगो। चमोली जिला प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिल योजना बैठक है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 वार्षिक जिल योजना के अंतर्गत कुल 74,23,70,000 रुपए की योजनाओं के स्वीकृति दी गई। बैठक के दौरान विभागवार प्रस्तावित योजनाओं की विस्तारल समीक्षा ले करी गई। प्रभारी मंत्री निर्देश दी कि योजनाओं के क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण दगड़ लागू करी जाओ ताकि केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को बहुत समन्वयक ज्यादा फैद मैसू तक पुजाए जाओ। उन्हों लादू और जो काम हो रही उनके प्राथमिकता दगड़ पुर करने के निर्देश ले दी। श्री चौधरी जिल प्रशासनक द्वारा सभी प्रतिनिधियों के प्रस्तावों के जिल योजना में शामिल करी जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहो कि आने वाले सालक योजना जिलक सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
1: लगभग 74 करोड़ रुपए की जिला योजना चमोली जनपद के लिए आज यहाँ पे पारित हुई है। सभी विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से रखे थे, उन पर विचार किया गया और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको धन आवंटित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि जो जिन विभागों के पास अपनी कार्यदायी संस्थाएं नहीं हैं वो जिला पंचायत के माध्यम से जो है कार्यदायी संस्था के रूप में उनको नामित करें।
0: भारत सरकारक गृह मंत्रालयक अधीन बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली बटी खेल कोटाक अंतर्गत आरक्षी कुल 404 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी करी जेरो। कमांडेंट कार्यालय 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरगढ़ यह संबंध में जिल खेल अधिकारी जिल रोजगार अधिकारी और जिल सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के पत्र भेज बेर जिलक सभी खेल प्रशिक्षण संस्थानों स्टेडियमों खेल अकादमियों स्कूलों और महाविद्यालय में यह एक व्यापक और प्रभावी प्रचार प्रसार करने का अनुरोध कर रहा ताकि सीमांत क्षेत्र ज्यादा है भी ज्यादा योग्य खिलाड़ी यो मौका फैद उठा सको। भर्ती पूर्व प्रक्रिया द्वि मुख्य चरणों में है। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर यू समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। भारत सरकारक स्मार्ट पीडीएस योजनाक तहत राशन कार्ड सेवाओं के ज्यादा पारदर्शी सरल और तकनीकी रूपल मजबूत बनाना उद्देश्य यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम URCMS पोर्टल लागू करी है। नई व्यवस्था के तहत अब मैं घर बैठे नई राशन कार्ड बने सकनी नाम जोड़न हटान और कोई लय संशोधन लय ऑनलाइन कर सकल। सरकारल पुराण RCMS पोर्टल के नई जमाना तकनीक और सरल प्रक्रियाओं दगड़ अपग्रेड करवे URCMS पोर्टल तैयार कर रो। यह राशन कार्ड हेबे जुड़ी सेवाएं तेज पारदर्शी और ज्यादा सुविधाजनक है। देहरादूनक जिल पूर्ति अधिकारी के अग्रवालल को की नई व्यवस्था राशन कार्ड सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी और मैं शुक बखतक ले बचत हेल।
2: प्रशासन ने जो है जो राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है उसको अपडेट किया है, RCMS को URCMS किया है, उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इसमें

0: परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फोटो इंडिविजुअल फोटो भी लगने लगी है, लगानी मैंडेटरी हो गई है, और सभी के मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा और जो है उससे ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। इस तरह से जो है राशन कार्ड के लिए जो है कोई भी जो है जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनके यथावत चलते रहेंगे। उनके लिए EKYC का है, वो दूसरा प्रोविजन है, वो सब लोग कर ही रहे हैं मैक्सिमम हमारा, हाँ वो भी चुका है, और जिनके बने हुए उनको कुछ नहीं करना।
1: पंच केदारों बटी एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्र नानक नाथक चल विग्रह उत्सव डोल आज विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल गोपनाथ मंदिर बटी रुद्रनाथ मंदिरक लिजी रवाना है। ये डोल आज रात्रि विश्रामक लिजी पनार बुग्याल पूजिल भो 18 मई हते रत्ती रुद्रनाथ धाम पूजिल जैक बाद 12:45 पर भगवान रुद्रनाथक कपाट आम श्रद्धालुओं के लिजी खोल दी जाल। यह मौक पर मुख्यमंत्री एक प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी दगड़ देश विदेश बटी बहुत संख्या में आई श्रद्धालु मौजूद रहा। रुद्रनाथक मुख्य पुजारी हरीश भट्टल बता कि 18 मई हते दोपहर कने रुद्रनाथ मंदिर कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाए।
2: ज्येष्ठ संक्रांति के दिन भगवान रुद्रनाथ जी की विग्रह मूर्ति वो अपने गर्भगृह से बाहर आकर यहाँ प्रांगण में रखी गई थी। 15 और 16 तारीख को यहाँ पे सबके लिए दर्शनार्थ रख के आज 17 तारीख को हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और 18 तारीख मई 11:30 और 12 बजे के बीच में सभी श्रद्धालुओं के लिए चतुर्थ केदार जहाँ भगवान शिव के मुख्य दर्शन है सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे।
1: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी को की आस्थाक जो सैलाब उमड़ रो वेल सनातन धर्म के मजबूती मिले।
3: भगवान रुद्रनाथ जी की डोली यहाँ पर प्रस्थान हुआ है। इस बहुत ही पावन अवसर पर मुझे माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा हूँ कि आस्था और श्रद्धा का जो समुद्र है वो चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो ध्वजवाहक के रूप में हमारी सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशील स्वर्गीय हरबंश कपूर की स्मृति में देहरादून केंद्रीय विद्यालय ONGC ग्राउंड में पर्यावरण संकल्प साइकिल रैली फ्लैग ऑफ करबेर शुभारंभ करो। कार्यक्रम में बहुत ही संख्या में जवान नानतिन स्कूली नानतिन और नागरिक शामिल हैं। यह मौक पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशील को की पर्यावरण संरक्षण आजक बखतक सबू हबे ठूल जरूरत छू और साइकिल चलान न केवल स्वास्थ्य के लिए भल छू बल्कि पर्यावरण संरक्षण दिशा में ले एक महत्वपूर्ण कदम छू। उन्होंने कहा कि यो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण संकल्प के लिए आगिल बनाक दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान छो। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सितारगंज में शिशोना नदी पर लगभग 11,41,00,000 रुपए लागतल बनने वाले 150 मीटर स्पान शिशि पुलक शिलान्यास करो। चमोली जिले में जिल योजना बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 वार्षिक जिल योजना के अंतर्गत कुल 74,23,70,000 रुपए की योजनाओं के स्वीकृत करी गो। भारत सरकार की स्मार्ट PDS योजना के तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू है गो और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथक चल विग्रह उत्सव डोल रवाना भो 12:45 पर मंदिर कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाए। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह अंक समाप्त हो। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्म संगीत में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका जैनाथ। तो चलिए ले चलते हैं आपको फिल्मी गीतों के इस सफर में और सुनवाते हैं आपको ये पहला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म रहना है तेरे दिल में से। और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है रूप कुमार राठौर ने, संगीतबद्ध किया है हरीश जयराज ने और बोल हैं समीर के। फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए श्रोताओं, ये अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं फिल्म कल हो ना हो से। गीत को अपनी आवाज दी है सोनू निगम ने और संगीत पद किया है शंकर एहसान लॉय ने, बोल है जावेद अख्तर के।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। और आइए अब आप तक अगला गीत पहुंचाते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से के और जयेश गांधी के युगल स्वर में। संगीतबद्ध किया है इस गीत को हिमेश रेशमिया ने और बोल हैं इरशाद कामिल के।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है काव्यांजलि।
1: गजल के चंद अशआर अर्ज करता हूं कि मतलब अर्ज किया है कि सर्द एहसास के चाकू रगे जहां तक पहुंचे, सर्द एहसास के चाकू रगे जहां तक पहुंचे, धूप से कह दे कोई मेरे मकान तक पहुंचे, धूप से कह दे कोई मेरे मकान तक पहुंचे, मुझ में दौरान सफर जागती ख्वाहिश ऐ काश, मुझ में दौरान सफर जागती ख्वाहिश ऐ काश, कोई तो फोन करे पूछे कहाँ तक पहुँचे, मुझ में दौरान सफर जागती ख्वाहिश ऐ काश, कोई तो फोन करे पूछे कहाँ तक पहुँचे। उसने मैसेज में उदासी की इमोजी भेजी, उसने मैसेज में उदासी की इमोजी भेजी, गिरते पड़ते हुए हम उसके मकान तक पहुँचे, उसने मैसेज में उदासी की इमोजी भेजी, गिरते पड़ते हुए हम उसके मकान तक पहुँचे, रात का चौथा पहर और तेरी यादों का हुजूम, रात का चौथा पहर और तेरी यादों का हुजूम, जैसे दरिया कोई खतरे के निशान तक पहुँचे, रात का चौथा पहर और तेरी यादों का हुजूम, जैसे दरिया कोई खतरे के निशान तक पहुँचे। ये गजल के चंद अशार अर्ज करता हूँ, मतलब अर्ज किया है कि आज फजा में रौनक है या आज बहुत वीरानी है, आज फजा में रौनक है या आज बहुत वीरानी है, हर वो बात जो मैंने कही हो लोगों को झुटलानी है, आज फजा में रौनक है या आज बहुत वीरानी है, हर वो बात जो मैंने कही हो लोगों को झुटलानी है, मैं तो उसकी खुशबू ही को मान चुका था उसका लम्स, मैं तो उसकी खुशबू ही को मान चुका था उसका लम्स, फिर भी दुनिया सोच रही है इश्क मेरा जिस्मानी है, हर नावल में उसका किस्सा हर मजमून में उसका जिक्र, हर नावल में उसका किस्सा हर मजमून में उसका जिक्र, कौन भुला सकता है उसको किसको ये आसानी है, कल शब से ही पूछ रही हो सुबह की पहली बस का वक्त, कल शब से ही पूछ रही हो सुबह की पहली बस का वक्त, अब ये तुम्हारी भीगी आंखें जान मुझे हैरानी है, एक गिलहरी एक गौरैया आंगन में एक नीम का पेड़, एक गिलहरी एक गौरैया आंगन में एक नीम का पेड़, अपने फ्लैट के अंदर मुझको ये तस्वीर लगानी है, जाड़े का दिन तेज दोपहरी बरसों बाद किसी का फोन, जाड़े का दिन डूबता सूरज पार्क की बेंच पे हम दोनों, जाड़े का दिन डूबता सूरज पार्क की बेंच पे हम दोनों, इसके अलावा जो कुछ भी है झूठा है बेमानी है, बंद हवेली जिसका मालिक बरसों पहले मर जाए, बंद हवेली जिसका मालिक बरसों पहले मर जाए, एक मुद्दत से मेरे दिल में वैसी ही वीरानी है, एक मुद्दत से मेरे दिल में वैसी ही वीरानी है। एक गजल के चंद अशआर मतलब अर्ज किया है कि किस लिए चुप हैं सभी लोग समझना ही नहीं, किस लिए चुप हैं सभी लोग समझना ही नहीं, मैं वो बीमार जिसे मौत का धड़का ही नहीं, किस लिए चुप हैं सभी लोग समझना ही नहीं, मैं वो बीमार जिसे मौत का धड़का ही नहीं, मेरे आंसू न कहीं उसका बुरा कर दें कुछ, मेरे आंसू न कहीं उसका बुरा कर दें कुछ, उससे बिछड़ा तो कई रोज में रोया ही नहीं, मेरे आंसू न कहीं उसका बुरा कर दें कुछ, उससे बिछड़ा तो कई रोज में रोया ही नहीं, मेरी गाड़ी का समय और तेरी नम आँखें, मेरी गाड़ी का समय और तेरी नम आँखें, जाने जा तुझको बिछड़ने का सलीका ही नहीं। किस लिए गौर करूं, किस लिए शामिल होऊं, किस लिए गौर करूं, किस लिए शामिल होऊं, गुफ्तगू जिसमें तुम्हारा कोई चर्चा ही नहीं। किस लिए गौर करूं, किस लिए शामिल होऊं, गुफ्तगू जिसमें तुम्हारा कोई चर्चा ही नहीं। खुदकुशी बात मुनासिब है तेरी भी लेकिन, खुदकुशी बात मुनासिब है तेरी भी लेकिन, और भी लोग हैं मुझ में मैं अकेला ही नहीं। खुदकुशी बात मुनासिब है तेरी भी लेकिन, और भी लोग हैं मुझ में मैं अकेला ही नहीं। आ कि फिर तेरी गवाही की जरूरत है मुझे, आ कि फिर तेरी गवाही की जरूरत है मुझे। मुझको लगता है कि मैंने तुझे चाहा ही नहीं, मुझको लगता है कि मैंने तुझे चाहा ही नहीं। और शेर अर्ज किया है कि कितना मुश्किल है किसी शख्स की खातिर रुकना, कितना मुश्किल है किसी शख्स की खातिर रुकना और कहना अभी चलने का इरादा ही नहीं। कितना मुश्किल है किसी शख्स की खातिर रुकना और कहना अभी चलने का इरादा ही नहीं। प्लॉट देना है कहानी को मुझे मरकर बस, प्लॉट देना है कहानी को मुझे मरकर बस, मैं वो किरदार जिसे फिल्म में आना ही नहीं। प्लॉट देना है कहानी को मुझे मरकर बस, मैं वो किरदार जिसे फिल्म में आना ही नहीं। मेरी गजलों के सबब मुझको अलहदा न समझ, मेरी गजलों के सबब मुझको अलहदा न समझ, सारी दुनिया का यही हाल है मेरा ही नहीं, सारी दुनिया का यही हाल है मेरा ही नहीं। गजल के चंद अशार अर्ज किए हैं कि जो भी मिला है तुमको उसका शुक्र करो तो अच्छा है, जो भी मिला है तुमको उसका शुक्र करो तो अच्छा है, वीराने में घर आंगन का नाम न लो तो अच्छा है, जो भी मिला है तुमको उसका शुक्र करो तो अच्छा है, वीराने में घर आंगन का नाम न लो तो अच्छा है। जब तक फोन मिलाना यूं तो मैं ही कम कर दूंगा दोस्त, जब तक फोन मिलाना यूं तो मैं ही कम कर दूंगा दोस्त, तुम भी बिछड़ कर अपना नंबर बंद रखो तो अच्छा है, जब तक फोन मिलाना यूं तो मैं ही कम कर दूंगा दोस्त, तुम भी बिछड़ कर अपना नंबर बंद रखो तो अच्छा है। अल्लाह जाने मेरी मसाफत कैसी तल्ख हकीकत हो, अल्लाह जाने मेरी मसाफत कैसी तल्ख हकीकत हो, ख्वाब कदे में रहने वालों तुम न चलो तो अच्छा है, शहर से उसको रुखसत करने घर से या तो गया हूँ पर, शहर से उसको रुखसत करने घर से या तो गया हूँ पर, सोच रहा हूँ बस में एक भी सीट न हो तो अच्छा है। एक सिपाही एक शहजादी बूढ़ा शह चालाक वजीर, एक सिपाही एक शहजादी बूढ़ा शह चालाक वजीर, इस नावल का आखिरी पन्ना तुम ही पढ़ो तो अच्छा है। मैं दफ्तर से छुट्टी ले लूं, घर के काम भी डाल दूं सब, मैं दफ्तर से छुट्टी ले लूं, घर के काम भी टाल दूं सब, सुबह को एक दिन धूप के जैसे तुम उतरो तो अच्छा है। क्या जाने किस खौफ में चुप हूं जंगल के ये सारे पेड़, क्या जाने किस खौफ में चुप हूं जंगल के ये सारे पेड़, यार किसी की खामोशी पर कुछ न कहो तो अच्छा है। जूते पहने बैग उठाए सोच रहा हूँ बोले वो, जूते पहने बैग उठाए सोच रहा हूँ बोले वो, बारिश के आसार हैं देखो रुक जाओ तो अच्छा है। एक मासूम सी ख्वाहिश मेरे दिल में मचलती है हर सुबह, एक मासूम सी ख्वाहिश मेरे दिल में मचलती है हर सुबह, दरवाजे पर पहली आहट आपकी हो तो अच्छा है। एक मासूम सी ख्वाहिश मेरे दिल में मचलती है हर सुबह, दरवाजे पर पहली आहट आपकी हो तो अच्छा है। एक घूंघट दो बूढ़े चश्मे ताकते होंगे आपकी राह, एक घूंघट दो बूढ़े चश्मे ताकते होंगे आपकी राह। शाम से पहले अपने घरों को लौट चलो तो अच्छा है। एक घूंघट दो बूढ़े चश्मे ताकते होंगे आपकी राह। शाम से पहले अपने घरों को लौट चलो तो अच्छा है। और एक गज़ल के चंद अशआर अर्ज किए हैं कि मुद्दतों खुद को चाक पर देखा, मुद्दतों खुद को चाक पर देखा तब कहीं जाके कुछ असर देखा, मुद्दतों खुद को चाक पर देखा तब कहीं जाके कुछ असर देखा। सुबह की चाय और तुम्हारा किस, सुबह की चाय और तुम्हारा किस, मैंने ये ख्वाब उम्र भर देखा। मुझसे कहती है आओ मर जाएं, मुझसे कहती है आओ मर जाएं, उसने फिल्मों को इस कदर देखा। मुझसे कहती है आओ मर जाएं, उसने फिल्मों को इस कदर देखा। वो भी मिट्टी का एक ढेला है, वो भी मिट्टी का एक ढेला है, वो भी मिट्टी का एक ढेला है, चांद को मैंने तोड़ कर देखा। वो भी मिट्टी का एक ढेला है, चांद को मैंने तोड़ कर देखा। क्यों ना दुनिया से सुलह कर लूँ अब, क्यों ना दुनिया से सुलह कर लूँ अब, एक दिन यूं ही सोच कर देखा। क्यों ना दुनिया से सुलह कर लूँ अब, एक दिन यूं ही सोच कर देखा। पार्क में खेलते हुए बच्चे, पार्क में खेलते हुए बच्चे, जैसे फूलों को शाख पर देखा। पार्क में खेलते हुए बच्चे जैसे फूलों को शाख पर देखा। आग पानी धुआं शरारे राख, आग पानी धुआं शरारे राख, जाने क्या ख्वाब रात भर देखा। आग पानी धुआं शरारे राख, जाने क्या ख्वाब रात भर देखा। आज फिर कैफियत गजब की है, आज फिर कैफियत गजब की है, आज फिर उसको आंख भर देखा। इश्क की बेंच पर गुजारी रात, इश्क की बेंच पर गुजारी रात, जब कभी खौफ का असर देखा। इश्क की बेंच पर गुजारी रात, जब कभी खौफ का असर देखा। किस जगह कैमरा उठाता मैं, किस जगह कैमरा उठाता मैं, सारा आलम लहू से तर देखा। किस जगह कैमरा उठाता मैं, सारा आलम लहू से तर देखा। छत पे जाले न खिड़कियों पे धूल, छत पे जाले न खिड़कियों पर धूल, कल नए जाविये से घर देखा, कल नए जाविये से घर देखा। बहुत शुक्रिया।
0: अभी आप सुन रहे थे काव्यांजलि श्री इमरान हुसैन के साथ। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हुए हैं और अब आप सुनेंगे श्री विश्व प्रांगण हल्द्वानी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान।

0: हल्द्वानी में मुखानी चौराहे पर शिव मंदिर के पास श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय में हम इस समय मौजूद हैं और हमारी मुलाकात हो रही है नाड़ी वैद्य श्री राहुल गुप्ता जी से। राहुल गुप्ता जी पेशे से एक नाड़ी वैद्य हैं जिन्होंने BAMS किया है, MD किया है शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़ महाराष्ट्र से, और गृह मंत्रालय से सम्मानित हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इन्हें सम्मानित किया है और बहुत से सामाजिक कार्य के लिए इन्हें बहुत से NGOs ने भी सम्मानित किया है, बहुत से अखबारों ने इन्हें इनके बारे में लिखा है और कई अंतरराष्ट्रीय चिकित्सीय सेमिनारों में इन्होंने अपने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। चिकित्सीय कार्य इनके कई शोध पत्र में प्रकाशित भी हो चुके हैं। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से युवा आयुर्वेद चिकित्सकों और छात्रों को ये मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। राहुल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, सबसे पहले तो हमारे आम श्रोताओं की जानकारी के लिए बताइए कि एक नाड़ी वैद्य कौन होता है और नाड़ी वैद्य जो परंपरा है भारतीय चिकित्सीय पद्धति में, उसका आज भी कितना महत्व है और लोगों को क्या जानने की जरूरत है?
1: धन्यवाद। नाड़ी परीक्षा जो है आयुर्वेद में रोग निदान करने की या रोग को जानने की बहुत पुरानी पद्धति है। इसमें बेसिकली कुछ एक लक्षण या कुछ एक व्याधियां जो रोगी चिकित्सक को बताने में असमर्थ रहता है या बताने में उसको मुश्किल होती है, उसको जानने का एक तरीका नाड़ी परीक्षा है। नाड़ी परीक्षा बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आती है और इसी वजह से अभी आपको कुछ गिने चुने ही या कुछ बिरला ही थोड़े बहुत नाड़ी वैद्य देखने को मिलते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि नाड़ी वैद्य बनने के लिए आपको सर्वप्रथम या सबसे पहले एक उचित नाड़ी वैद्य गुरु ढूंढना पड़ेगा और उसके सानिध्य में रह के उसके साथ साथ रह के नाड़ी परीक्षा सीखनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप वो नाड़ी परीक्षा सीखते हैं तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको गुरु की अनुमति चाहिए रहती है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे आपने महाभारत का उदाहरण सुना होगा कि कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र होते हुए भी वो उसे प्रयोग नहीं कर पाया था क्योंकि उसके गुरु का आदेश नहीं था। उसी तरह से नाड़ी परीक्षण करने के लिए आपको गुरु से आज्ञा या दीक्षा जरूर लेनी पड़ती है। मैं एक परंपरागत नाड़ी वैद्य हूँ जो नाथ नाड़ी संप्रदाय से आता है। हमारा जो आध्यात्मिक आश्रम है वो कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, श्री विश्व पंडरी। वहाँ से मैंने अपना नाड़ी परीक्षण की दीक्षा प्राप्त करी है और श्री विश्व परंपरा चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत मैं ये अभी नाड़ी परीक्षा कर रहा हूँ।
0: नाड़ी परीक्षण का आज के समय में भारतीय पद्धति है, चिकित्सीय पद्धति है, उसमें कितना महत्वपूर्ण स्थान है और कितना रिलेवेंस है इसका आज के समय में और क्या युवाओं को जानना चाहिए?
1: नाड़ी परीक्षण अपने आप में एक संपूर्ण परीक्षण पद्धति है जिसमें रोगी के शारीरिक रोग के साथ साथ रोगी के आधिदैविक रोग, जिसको आम भाषा में या उत्तराखंड की भाषा में भूत बाधा, ग्रह बाधा इत्यादि जो जो रोग रहते हैं उनको जानने के लिए भी नाड़ी परीक्षण अपने आप में सक्षम है। बहुत सारे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सुना होगा कि लोगों को कुछ झपट लग गई है, कुछ पकड़ लग गई है या फिर ग्रह बाधा हो गई है, छल लग गया है। तो इन सब चीजों का भी जो ज्ञान है वो नाड़ी के द्वारा हो सकता है। इसके अलावा जो शारीरिक रोग हैं उसमें दोषों की क्या स्थिति चल रही है और दोषों के हिसाब से रोग का निदान कैसे किया जाए वो नाड़ी परीक्षण से करना बहुत आसान होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो चिकित्सक नाड़ी परीक्षण करने में असमर्थ हैं वो अमूमन मॉडर्न डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो भी रहता है उसका सहारा लेके रोग का निदान बनाते हैं और फिर उस पर आयुर्वेद चिकित्सा देते हैं, जो कि सरासर गलत है क्योंकि रोग आयुर्वेद का है तो आपको रोग परीक्षण के तरीके भी आयुर्वेद के ही अपनाने पड़ेंगे। आयुर्वेद निदान पद्धति से रोग का परीक्षण कर उसकी चिकित्सा करने पर रोग जल्दी ठीक होता है। और क्योंकि मैंने बोला कि इसमें एक आध्यात्मिक एंगल भी है, इस वजह से नाड़ी परीक्षण जो है एक संपूर्ण चिकित्सा के रूप में या एक संपूर्ण परीक्षण पद्धति के रूप में आधुनिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से श्रेष्ठ है।
0: तो इस एपिसोड को संपन्न करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नाड़ी वैद्य श्री राहुल गुप्ता से आप अगर कोई चिकित्सीय सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर 7895372936 पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस एपिसोड को यहीं संपन्न करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।

अभी आप सुन रहे थे श्री विश्व प्रांगण हल्द्वानी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गजल।

आप सुन रहे हैं पंकज उदास की गाई गजलें। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे थे पंकज उदास की गजल। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रियंका जैना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और फिल्म संगीत में ये जो सुरीले मीठों की सरगम है इसकी तरफ हम आपको ले चलते हैं और सुनवाते हैं आपको इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आशिक से। और इस गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने, संगीतबद्ध किया है संजीव दर्शन ने, बोल है समीर के।

श्रोताओं, प्यार की खूबसूरती भी कुछ ऐसी होती है कि वो कभी मन की धड़कनों में धीरे धीरे उतरता है तो कभी किसी अपने के साथ बिताए पलों में एक मीठा सा सुकून बन जाता है। जब दो दिल सच में एक दूसरे को महसूस करने लगे तो हर मुलाकात खास बन जाती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर, और इस सफर में आपको आगे लिए चलते हैं और सुनवाते हैं आपको ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आपका सुरूर से, और इस गीत को अपनी आवाजें दी हैं हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल ने, संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने और बोल हैं समीर के।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आपका सुरूर का ये बेहद रोमांटिक गीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर और आप सुन रही हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। किसी का साथ जब दिल को सुकून देने लगे तो छोटी छोटी बातें भी बेहद खास लगने लगती है। प्यार की खूबसूरती भी तो इसी में ही है, जहाँ एक मुस्कान, एक मुलाकात और किसी का साथ पूरी दुनिया सा महसूस होने लगता है। तो आइए इन्हीं प्यारे सासों के साथ बढ़ते हैं इस फिल्मी गीतों के सफर में आगे और पहुंचाते हैं आप तक ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अजहर से। और इस गीत को अपनी आवाजें दी है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने और गीत के बोल लिखे हैं अमाल मलिक ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है और अब मुझे यानी प्रियंका जैना को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री

0: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुत शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
6: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल

में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Spotlight. Good evening, listeners. Welcome to today's Spotlight. I'm Sarabjit Kaur, and today we will be discussing about Prime Minister's visit to five nations, strengthening bilateral ties. And to discuss this, we have with us former Ambassador Anil Trigunayath. Ambassador Trigunayath, welcome to the Spotlight.
1: Thank you very much.
0: Before we proceed with the discussion, let's listen to an exclusive interview of India's ambassador to Norway, Ambassador Gloria Gangte. The interviewer is Sangeeta Godbole, Akashwani correspondent, who is covering Prime Minister's visit to Oslo.
2: Prime Minister Narendra Modi will visit Norway in the fourth leg of his tour on 18th and 19th of May. This would be his first visit to Norway and it will provide an opportunity to strengthen bilateral ties, especially in view of the recently implemented Trade and Economic Partnership Agreement. This visit also includes the third India-Nordic Summit, which proves to be pertinent in a world experiencing technological revolution and global disruptions. To give us more information about this visit, we have Indian Ambassador to Norway, Gloria Gangte. Ma'am, welcome and thank you for speaking with Akashwani News.
3: Thank you.
2: Ma'am, what can you tell us about the significance of Prime Minister's visit to Oslo and what would be the agenda during the bilateral meetings?
3: Prime Minister's visit to Oslo is taking place after 43 years of Prime Ministerial visit from India to Norway. And this visit will be the first visit of our Prime Minister Modi to Norway. And as you rightly said, this is taking place in this backdrop of global flux as well as the India-EFTA TEPA agreement, and therefore this presents a huge opportunity for our collaboration to be translated into real tangible outcomes. And both leaders are expected to deliberate on issues of mutual interest both in the bilateral as well as in the multilateral sector, and regional issues of interest to both countries. And I would say that both our countries have, although there has been a lot of gap since the visit of a prime minister from India to Norway, both our countries have collaborated in so many areas that have really impacted the technological advancements in various sectors of individual life. And so there is growing collaboration between India and Norway, and especially in areas of maritime shipbuilding, shipwrecking, and also ship recycling. And there are a lot of green and clean technology collaboration, and research and education is another area where we have very strong collaboration. We are developing that collaboration further. And I would say that there is a lot of investment also from Norway to India.
2: India and Norway have long-standing partnership in maritime sector. So could you throw some light on the various engagements expected to happen between India and Norway?
3: Well, there are a number of engagements in the shipbuilding industry. Norwegian companies have, ship owners, I would say specifically, have ordered about 10% of their order for new ships are being done in India. So India is building ships for Norwegians, and these are going to be green ships as well. And then there, Norway has very good companies which are involved not only in clean and green technology in shipping, but also in standard setting and certification. And we can learn a lot from them, and there's already collaboration on that side as well. I would also say that digitalization in shipping is also another area that we're looking at. And in fact, there are about 3,000 seafarers of India in Norwegian ships. So there is huge collaboration, and I would say that even in the ship recycling, in the circular economy as well, there is great collaboration from this sector.
2: What would be the green technology sector that we are looking forward to in India-Norway relationship?
3: I think there is a wide range of green and clean technology that Norway has, especially in renewable energy, solar, batteries. As you can see, in this summit, there are side events which are actually focused on these areas, such as the offshore wind, for example, the batteries, solar energy. Then there are also renewable energy sectors that we have been collaborating in very strongly. The strength of Norway in carbon capture, usage and storage is something that India can learn from.
2: Ma'am, the second part of the Prime Minister's visit to Norway would be the third India-Nordic summit. And this summit comes at a very opportune time. How close a bond does India share with the Nordic countries?
3: Well, I would say that this is the third, as you rightly said, summit, which means that we are going back to 2018 when the first Nordic summit took, India-Nordic summit took place in Sweden. And the success of these two has encouraged both sides to build upon them in this third summit. I'm quite sure that there are a lot of areas that we are looking at for collaboration with India and Norway, with India and the Nordic countries, particularly in the areas of sustainability, technology, education, research, and polar and Arctic studies as well.
2: Ma'am, economic cooperation on various sectors is one of the main pillars of India-Nordic relations. Considering the economic partnership agreement that came into force from October 2025, what's India's expectations from this?
3: Both sides are looking at this collaboration and its potential with great enthusiasm, and that is the reason why during this visit of Prime Minister there will be a business research summit in which both Prime Ministers will be interacting with the business community to look at various opportunities for increasing the investment. In fact, the TEPA agreement has provision Norway and other EFTA countries would be looking at investing about $100 billion in 15 years in India and also create 1 million jobs. So I would say that India-Norway partnership is a very forward-looking partnership that is based on shared values as well as the desire to really combat global challenges in a sustainable, peaceful manner.
2: Ma'am, science and technology along with Arctic cooperation, this is also an area of common interest for India and Nordic countries. What could you tell us about that?
3: Well, science and technology is something that has traditionally been a very strong point of our collaboration. And in fact, we have done a number of joint researches in various areas, including marine pollution and plastic pollution, etc. And I would say that, in fact, the first Antarctica journey that Indian scientists undertook was in a Norwegian ship. And also we built our Himadri, the observer station, with the help of Norwegians. And so I think there is already great collaboration in that, as well as we are also now looking at greater space collaboration in space. And there are, in this visit, there are agreements which we are looking to conclude, especially in the areas of research and technology in clean and green. And there are some very important areas in the health sector also that we are looking at.
2: Nordic countries have a strong presence of Indian diaspora. How do you look at their contribution in these countries?
3: There is a growing Indian population. Traditionally, Nordics were not really a destination for Indian professionals. But I would say that because of their emphasis on technology and cutting-edge research, it has attracted a lot of Indian professionals. Indian professionals. These are mostly Indian professionals who have come. A lot of them are from the IT sector. And in fact, you would be happy to note that the digital payment platform that Norway had, the first one, was built by our Indian IT professionals. So very interesting collaboration there. And India and Nordic countries share this common desire to really bring technological solutions to global problems.
2: Thank you, ma'am, for giving our listeners a great insight into the upcoming visit.
3: Thank you.
2: Prime Minister Narendra Modi's visit will be an opportunity to induce momentum in bilateral relations between India and Norway, and the third India-Nordic summit will impart a more strategic dimension to India's relationship with the Nordic countries. This is Sangeeta Godbole from Oslo, Akashvani News.
0: So, Ambassador Trigunath, we'll like to start with a broader canvas of things. We'd like to know from you, how significant is Prime Minister Narendra Modi's visit to four European nations for India-Europe ties, especially with countries like Sweden?
1: Yeah, as you are aware that for quite some time with Sweden, and I have served there, our relationship in the beginning was very good in the 80s, and later on with India's nuclear tests, they were the last ones to really remove the sanctions against India. But since then, once they realized in 2000s, they have been moving forward in a very big way. Now, Sweden is one country which has been present in India more than 100 years. The first establishment of Swedish Match in Pune, and other companies like Alfa Laval and all. Now, these countries, actually, all the Nordic countries, which include Sweden, Finland, Iceland, Norway, Denmark, all these five countries have actually done remarkably well in R&D, in science and technology, in innovation, in climate change, and also in new technologies and emerging technologies. So therefore, our collaboration with them, whether in defense and security or in technological domain or in trade in general, is of tremendous significance. And I think this visit, which will also be engaging not only the Prime Minister's visit to Netherlands, Sweden, Norway and Italy, but Prime Minister under the rubric of India Nordic Summit, which will be the third edition, will also be interacting with the Prime Ministers of Denmark and Iceland, who will be joining him in Norway.
0: Ambassador Trigunayak, in the backdrop of the West Asia crisis, this is a time of supply chain disruptions, global economic uncertainty, sluggish growth rate in Europe. We'd like to have your view. Can India emerge as a trusted manufacturing and investment destination for Europe?
1: Well, indeed. I mean, India and the policies that Prime Minister Modi has embarked upon, especially Make in India for the World, are some things that these countries are very much interested in. And if you were to see the second Indian Nordic Summit in Denmark, where the Green Corridor and the smart manufacturing was concerned. And as I said earlier, that all these big companies, multinational companies of these countries have been present. More importantly, countries like Norway, they have these huge sovereign wealth funds, and they have been investing billions of dollars in India and Indian industries and in the markets which are being used for that. So therefore, there is a tremendous confidence in India. And you rightly mentioned that there has been a problem of supply chains. In fact, there are three or four black swan events that are simultaneously operating and impacting this kind of situation, which disrupts the supply chains and the global governance. Firstly, it was pandemic. And then we had Russia-Ukraine war, which is directly of concern to these countries. And then we have this Middle East war between Iran, US and Israel, which has really brought about a major problem with regard to energy security and disruption in supplies. And therefore, renewable energy is one area in which hydrogen, in which we are going to work with them very closely. And also in the newer geographies like Arctic, that will be one area of cooperation that India is looking forward to work with them very closely.
0: So if I were to give a twist to this discussion and see beyond government level engagement, how important are people-to-people ties, education, innovation partnerships and strengthening India-Europe relations? What's your expert view on this?
1: Well, I think that for any relationship to sustain, the people-to-people exchanges are extremely important. And as you have seen, the Prime Minister has just in Netherlands, he addressed the Indian community there. Now in Sweden, we have more than 50,000 Indians, and most of them are professionals. When I was there, there were about 13,000. Now they have grown to 50,000. And that's the story in most of these countries. Indians are highly welcomed in these countries. They have been entrepreneurs. They have been professionals. They have been businessmen. And that is continuing. Similarly, the cultural connect with these countries. They're very keen to have Indian Bollywood industry or the film industry to go there and shoot in those beautiful locations in their countries. So I think that this is going on. Education is something that is very important. Many of their universities are looking for opportunities to collaborate with Indian educational institutions of repute. That is important. And similarly, the migration and mobility is also a very important dimension that India always pursues, because we are very good in our expertise as far as the IT professionals and other services sectors are concerned. And those are the things that are continuing, and we have been signing these agreements. One of them has been also a part of our agreement that we signed with UK and with European Union, and as well as these figure very prominently in the India Nordic Summit discussions which will be held in Norway this time.
0: Listeners, with that, we come to the end of today's discussion on Prime Minister Narendra Modi's ongoing five-nation visit. Ambassador Anil Trigunayak, thank you very much for sparing your valuable time and sharing such great inputs. Thank you, sir.
1: Thank you very much.
0: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
4: Spotlight. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
5: कूपे
6: ये है मेरा कूपे। जूडिथ का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
7: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
6: कूपे में भी?
7: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
6: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
7: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
6: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
7: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
6: अच्छा, मैम साहब आ गए। आप तो कह रहे हैं। सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी। लेकिन रुको सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
7: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
8: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
6: और मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना, अब मन को नहीं मार सकता।
7: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
6: ओके, लौट कर बातें होंगी।
7: ओके।
8: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
7: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लूं। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो ना प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन के सारे पर्दे खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपने प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही। ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही है।
9: अच्छा, मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
7: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
9: मेरी शादी नहीं हुई है।
7: क्या?
9: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
7: आप कितने दिन से घूम रही है?
9: कई वर्ष हो गए।
7: आपके बहुत मित्र है।
9: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
7: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो?
9: करती हूँ। उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
7: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं महात्माओं योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
9: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उथार का आनंद है, एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर्मन से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ। जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूँ।
6: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप ही लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
9: ये मेरी डायरी है।
6: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
9: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
6: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल लूं, वर्षा से भीगी हवा है। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
9: सब काम पूछ कर ही करते हैं आप।
6: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीते हैं?
9: पीते तो नहीं पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
6: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
9: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
6: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
9: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
6: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
9: पीजिए।
6: बुरा मान ली प्लीज। बात यह कि मैं साथी के बिना रह नहीं सकता, बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियां, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
9: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
6: नहीं है तो हो जाएंगे। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
9: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
6: गणित, विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता, छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
9: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
6: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
9: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
6: नाराज ना होइए। अच्छा मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप, आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
9: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
6: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। यार दे लव मैनी टाइम्स, लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिव्य भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे,
9: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
6: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई तो मुझसे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक।
5: तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
9: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
5: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
9: बैठे रहो।
5: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
9: नहीं।
5: तुम्हें छू सकता हूँ?
9: नहीं।
5: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे?
9: नहीं।
5: क्यों?
9: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
5: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
9: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
5: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
9: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं। प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
5: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
9: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
5: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे? उस आनंद को मेरे पास है, पियोगी?
9: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
5: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
9: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
5: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
9: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
5: प्लीज,
9: मत तेज पुंज है, औरत उसकी तेज को छीनने वाली है। ये दलीलें अब बासी होती
5: हैं। प्लीज,
9: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्य है। मैं कहती हूँ उसे छोड़ो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
5: सांत्वना,
9: कौन है? क्यों आए हैं इस समय?
10: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
9: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
10: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
9: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
10: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
9: क्या मतलब है आपका?
10: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
6: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
9: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। माफी चाहती हूँ।
10: ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
6: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ। मुझे बहुत दुख है दरअसल।
9: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडित, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह है सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तूने मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी दिल की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहती है कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहती है जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
1: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
1: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो। लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
0: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
1: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
0: शत्रु के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो, ये ठीक है। छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
1: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
0: ये छद्म है, छद्म।
1: सुनो, कहां गई तुम? बोलो।
0: कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सरजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेशन से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं

0: सच्चा दिल तर्कों को ठगे हुए हैं, कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ, सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा अब सो रही हूँ, गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
3: बहुत देर से आई हो, कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
0: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
3: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
0: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
3: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
0: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
3: हाँ यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगी मम्मा?
0: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
4: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
0: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं, मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है।

0: शांति ने शांति ने तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
0: शांति ने हमें लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ कर देना चाहिए। नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
0: तुम शादी कर लो।
1: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
0: धोखा तुम आप दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
0: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है।

0: उनके एक मित्र थे। एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
1: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
0: आप नहीं पूछोगे?
1: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
0: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
1: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोड़ डालूं और
0: फिर रुक क्यों गए?
1: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
0: तुम में और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
2: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
0: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
2: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छंद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
0: मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
3: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ। विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
0: मेरा नाम सांत्वना है।
3: ओह, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरबजीत भाई, बधाई।
4: निगम, इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
3: वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली। अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है। वाह, माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
0: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
3: ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
0: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप?
3: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। और सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
0: दरवाजा खुला रहने दो।
1: क्यों?
0: मेरी इच्छा।
1: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
0: तो आप में भी समझने की शक्ति है? स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
2: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
0: बड़ी सुंदर जगह है ये।
2: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछो का स्थान।
0: तुम्हारा ऐसा सोचने भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछो का स्थान है वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
2: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
0: कंडक्टर, मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
5: जी अभी आया। लाइए,
2: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
0: ये लीजिए।
1: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ। खूब बातें कर रही दोनों, सामान ले।
2: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तुम्हें भी साथ में केंद्र की खाक छानता फिर रहा हूं।

कूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरी मेहता।

अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल। देश के 92%
0: ये आकाशवाणी है और अब आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। अब सुनिए रविवार स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।
3: आज के रविवार स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत है सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिम्फनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगूबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
4: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रिनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। बॉर्न एंड रेज्ड इन चालीसगांव महाराष्ट्र एंड इंस्पायर्ड बाय हिज लेट फादर श्री रामचंद्र सोनार, एन एमिनेंट वोकलिस्ट ऑफ द वारकरी संप्रदाय, विवेक स्टार्टेड

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Sri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: अभी आप सुन रहे थे रवि वासरीय, अखिल भारतीय संगीत सभा, ये
1: मैं प्रशांत
0: आकर्षण।
1: कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
2: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता।